दरू सजन से पान दरूद बुधन था। यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाप्त फरमाते हैं। ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाप्त।

आपको देखता हूँ माशाल्लाह, आपको देखता हूँ दिल खुश होता है, पीछे देखता हूँ फिर बड़ा नर्वस हो जाता हूँ। अब आपसे गुजारिश है, जो खामोश बैठा हो उससे पूछ लें कि मौला अली का नारा लग रहा है तेनू खैर ते है, क्यों खामोश बैठा है? थोड़ा जा ऊंचा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सलामत रहें, मिलकर।

कि जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाएं, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समाथर में बावाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बावाजे बुलंद हैदर बरगा सकीन कोई।

0: बस बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: हो नारे हैदरी।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252578 6।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: यादाशनामे ते सही करे छॾी आहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बाकाई बि तस्दीक कंदे चयो आहे त अमरीकी सदर ईरानी सदर मफ़ामत यादाशनामे ते सही करे छॾी आहे। जुमे ॾींहुं स्विट्ज़रलैंड में थियल मुलाक़ात बाबति फ़िलहाल तस्दीक नथी करे सघिजे। जनवा में टीमनि जी शिरकत शेड्यूल मुताबिक़ थी आहे। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त अमरीकी फ़ौज विच ओभर में कुझु वक़्त लाइ मौजूद रहंदी। हतमी मुआहिदे लाइ 7 ॾींहनि जी डेडलाइन मुश्किल नाहे। ईरान सुठो रवैयो रखियो त 300 अरब डॉलर फंड ॾींदासीं। जंग जारी रखूं हा त ख़तरनाक इक़्तिसादी नतीजा साम्हूं अचनि हा। जॾहिं बि अमुन जी ॻाल्हि कयूं था त स्टॉक मार्केट राकेट जीअं मथे अचे थी। ईरान जा मंझंदि थियल पैसा वक़्त अचण ते वापसि कंदासीं। ईरान मस्बत रवैयो अख़्तियार कयो त पाबंदनि में नरमी थी सघे थी। अमरीकी सदर ट्रंप जी फ्रांस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, संदस चवण हो त ईरान में स्कूल ते हमले बाबति जांच जारी आहे। लबनान मामले ते नेतन्याहू सां इख़्तिलाफ़ आहिनि। इसराइल खे दिफ़ा जो हक़ हासिल आहे पर बेरूत जूं इमारतूं तबाह करणु ठीक नाहे। ईरान सां मुआदो न कयूं हा त अबन हुरमज़ न खुले हा। ईरान में रिजीम चेंज थी चुकी आहे, हाणे त हुते स्मार्ट क़यादत आहे। ईरान एटमी हथियार न ठाहिण ते बि राज़ी थी वियो आहे। ॿिनि महिननि अंदरि मुआदे ते अमल न थियो त ईरान ते ॿीहर बमबारी शुरू कंदासीं। ईरान सां मुआदे में पाकिस्तान ऐं कतर जूं सफ़ारती कोशिशूं साराह जोगियूं आहिनि।

0: अमरीका ईरान सां मुफ़ाहमत यादाशनामे जा 14 नुक़्ता जारी करे छॾिया। अपने हुरमत जी बहाली, ईरान ते लॻल माली पाबंदियुनि में नरमी ऐं एटमी प्रोग्राम बाबति ॻाल्हियूं, लबनान ते समूरनि महाज़नि ते हमला बंदि थियणु मुफ़ाहमत यादाशनामे जे नुक़्तनि में शामिल, अमरीका ऐं ईरान जे इक्वे ते हमला रोकण जो बि अज़म यादाशनामे जे नुक़्तनि में शामिल। वे मुल्क ख़ुदमुख़्तियारी इलाक़ई सलामती जो एहतराम कंदा ऐं अंदरूनी मामलनि में मुदाख़िल न कंदा। वे मुल्क 60 ॾींहनि अंदर हिकु आख़िरी मुआदे ते पहुचण लाइ ॻाल्हियूं कनि। पोइ अमरीका फौरी तौर ते ईरान ख़िलाफ़ बहरी नाकाबंदी हटाइण शुरू कंदो। इहो अमल महीने में मुकमल कंदो। जहाज़नि ते अचवञु जंग खां पहिरियां वारी शकल में बहाल कई वेंदी। आत्मी मुआदे जे 30 ॾींहनि अंदर अमरीका पंहिंजी फौजी ईरानी हंधनि मां हटाईंदो। सिंध जे नए माली साल लाइ 3562 अरब रूपियनि जी बजेट पेश। 36 अरब खां वधीक जो खसारो हूंदो। मुलाज़मनि जे पघारनि ऐं पेंशन में 7-7 सैकड़ो वाधि जो ऐलान। परतनि जो घटि में घटि अजूरो 40,000 मां 43,000 रूपिया कयो वियो। 2,75,000 खानदान खे मुफ़्त होम सोलर सिस्टम ॾियण वारी स्कीम मुतारिफ़। सालानी तरक़ियाती बजट में कटौती। तरक़ियाती बजट 1,018 अरब रूपया मां घटाए 980 अरब मुख़्तस करण कई वई। वफ़ाक़ सां तय थियल मुआदे ते तरक़ियाती प्रोग्राम 575 अरब रूपियनि मां घटाए 400 अरब कयो वियो। गैर तरक़ियाती बजट में 418 अरब रूपियनि जी वाधि। बोड़ मुतासिर घरनि जी ॿीहर तामीर लाइ 5.2 अरब। पुठिते पियल तबिके जी ज़िंदगी बहितर बणाइण लाइ 13.3 अरब रखण जी तजवीज़। बेनज़ीर हारी कार्ड लाइ 2.5 अरब। सिंध पीपल्स सपोर्ट प्रोग्राम ऐं पीपल्स हाउसिंग स्कीम लाइ 2.5 अरब रूपया मुख़्तस। सिंध में 50 करोड़ रूपियनि खां वधीक ज़री आमदनी ते 8% सुपर टैक्स लागू। प्रॉपर्टी डेवलपर्स ऐं प्रोमोटर्स ते फी स्क्वायर यार्ड 100 रूपया। इंश्योरेंस एजेंट्स ते 2% ऐं इंश्योरेंस ब्रोकर्स ते 3% टैक्स लागू। वॾे वज़ीर सिंध फाइनेंस बिल सिंध असेंबली में पेश करे छॾियो। री इंश्योरेंस सर्विसिस, अरावती सर्विसिस इंश्योरेंस, लीगल सर्विसिस टैक्स कंसल्टेंट्स, रिपेयर सर्विसिस, ब्यूटी ऐं फिज़िकल सर्विसिस टैक्स।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की।

0: प्यारा लेन लाए
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
0: 03125257 86
1: जी हाँ बुड़ी 331525786
0: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
2: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576
3: जी हा 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: Establishing the SIMF International Financial Center as a world-class platform for investment, finance, innovation and dispute resolution.
2: सिंध जे नए माली साल लाइ 3,562 अरब रुपयनि जी बजट पेश 36 अरब खां वधीक जो खसारो मुलाज़मनि जी पघार ऐं पेंशन में 7% वाध जो ऐलान कोरेतुनि जो घटि में घटि अजूरो 40,000 मां वधाए 43,000 कयो वियो 275,000 खानदाननि खे मुफ़्त होम सोलर सिस्टम ॾियण वारी स्कीम बि मुतारिफ़ सालियानी तरक़ियाती बजट तरक़ियाती बजट 1,018 अरब मां घटाए 980 अरब रुपया मुख़्तस वफ़ाक़ सां तय थियल मुआदे तहत तरक़ियाती प्रोग्राम 575 अरब रुपयनि मां घटाए 400 अरब रुपया कयो वियो गैर कानूनी बजट में 418 अरब रुपयनि जी वाधि थी आहे ॿोॾ मुतासिर घरनि जी ॿीहर तामीर लाइ 5.2 अरब रुपया रखिया विया पुठिते पियल तबक़नि जी ज़िंदगी बहितर बणाइण लाइ 13.3 अरब रखण जी तजवीज़ बेनज़ीर हारी कार्ड लाइ 2.5 अरब जॾहिं त सिंध पीपुल्स प्रोग्राम ऐं पीपुल्स हाउसिंग स्कीम लाइ 2.5 अरब रुपया मुख़्तस कया विया

0: सिंध में 50 करोड़ रुपयनि खां वधीक ज़री आमदनी ते 8% सुपर टैक्स लागू। प्रॉपर्टी डेवलपर्स ऐं प्रोमोटर्स ते फी स्क्वायर यार्ड 100 रुपया, इंश्योरेंस एजेंट्स ते 2% ऐं इंश्योरेंस ब्रोकर्स ते 3% टैक्स लागू। वॾे वज़ीर सिंध फाइनेंस बिल सिंध असेंबली में पेश करे छॾियो। टी इंश्योरेंस सर्विसिस, अदावती सर्विसिस, इंश्योरेंस एजेंट्स ऐं ब्रोकर्स ते टैक्स लागू। लीगल सर्विसिस, टैक्स कंसल्टेंट्स, रिपेयर सर्विसिस, ब्यूटी ऐं फिज़िकल सर्विसिस टैक्स जे दायरे खां ॿाहिरि।
1: सिंध जी बजट में तालीमी शोबे लाइ 620 अरब ऐं सिहत लाइ 393 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। अमुन अमान, जेलनि ऐं पुलिसिंग लाइ 216.57 अरब, कानून ऐं पार्लियामानी मामलनि लाइ 27.55 अरब, ज़रात लाइ 38.22 अरब, लाइव स्टॉक ऐं फिशरीज़ लाइ 11.6 अरब रुपया रखिया विया। आपाशी शोबे लाइ 41.1 अरब, मकानी खाते लाइ 201.39 अरब, इतलात खाते लाइ 10.85 अरब रुपया मुख़्तस। स्कूल एजुकेशन जी प्राइमरी, मिडिल सेकेंडरी ऐं हायर सेकेंडरी लाइ 446.95 अरब रुपया मुख़्तस। कॉलेज एजुकेशन लाइ 41.214 अरब, यूनिवर्सिटीज़ ऐं बोर्ड्स लाइ 9.417 अरब ऐं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लाइ 8.18 अरब रुपया रखिया विया।
0: सिंध हुकूमत माली साल 2026-27 जी बजट में मुख़्तलिफ़ खातनि में 8,499 नौकरियूं पैदा करण लाइ 16.73 अरब रुपया रखी छॾिया। बजट दस्तावेज़नि मूजिबि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में 7,635 नयूं नौकरियूं पैदा कयूं वयूं आहिनि। सर्विसिस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 2 नाणे खाते में 18 आसामियूं भरियूं वेंदियूं। जथाबंदी, तरक़ीअ वारे खाते, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, टैक्स मैनेजमेंट, घरू खाते, जेलनि वारे खाते ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ खातनि में बि नयूं नौकरियूं पैदा कयूं वयूं आहिनि।
1: NICVD लाइ 12 अरब, SICVD लाइ 14, TB कंट्रोल प्रोग्राम लाइ 93 करोड़, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लाइ 37 करोड़, PPHI लाइ 24 अरब, API प्रोग्राम लाइ 24 अरब, इंडस अस्पताल लाइ 8 अरब, किडनी सेंटर कराचीअ लाइ 30 करोड़, हसन सलेमान मेमोरियल अस्पताल लाइ 2 अरब 14 करोड़, एम हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी बहिरा टाउन लाइ 20 करोड़, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन लाइ 3 अरब 50 करोड़, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथोलॉजी लाइ 1 अरब रुपया रखण जी तजवीज़।

0: संसदीय बजट में सूबाई राजधानी कराची की तरक्याती बजट लाइ वरी रकम मुख़्तस मजमूई तौर शहर की 816 मनसूबन लाइ 664 ढाई टे अरब रूपया रखण की तजवीज़ 110 मेगा मनसूबन लाइ 1 अरब रूपया रखा वा 167 जारी मनसूबन लाइ 500 मिलियन मुख़्तस एयरपोर्ट का स्टार गेट ताईं नओं फ्लाई ओवर ठहंदो मलीर हॉल्ट का शहराए फैसल ताईं राइट टर्न अंडर पास जो मनसूबो भी बजट में शामिल रेड लाइन बीआरटी लाइ 13.5 अरब येलो लाइन लाइ 3.5 अरब रूपया मुख़्तस कुझ नाले स्टोन वाटर ड्रेन सर्विस रोड लाइ अरबे रूपयनि जा मनसूबा लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज लाइ 4.5-37 अरब रखण जी तजवीज़ 6 जदीद गार्बेज ट्रांसपोर्ट स्टेशन सॉलिड वेस्ट मनसूबन लाइ भी रकम रखी वई K4 पाणी मनसूबे वाटर सप्लाई निज़ाम जी तोसी वारा मनसूबा भी जारी रहंदा मलीर एक्सप्रेस वे ते नवा इंटरचेंज राबता रोड ठाहिण लाइ भी रकम रखी वई वॾे वज़ीर माद अली शाह बजट तकरीर कंदे चयो त सिंध हुकूमत कराची जे मेगा मनसूबनि ते ख़ासि ध्यानु ॾेई रही आहे
1: सिंध जे नए माली साल जी बजट में सब्सिडीज़ लाइ 133

0: आय भी बजट में अरबे रुपए।
1: आज मेहमान आने हैं घर पे, सुबह सुबह इस ख्याल ने उठा दिया है कि दावत के मेन्यू में क्या क्या होगा।
2: कोरमा बनाती हूँ।
3: भाभी के हाथ का कोरमा तो मस्त है,
2: बल्कि बिरयानी भी बना लेती हूँ।
4: आज बिरयानी हो जाए तो मजा आ जाए।
5: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
1: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576
2: जी हा 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4।

वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:21 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है, तमाम तर लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी। बेटर लेट देन नेवर, अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। फसल के खुदा खैरियत है मौजूद और तवक्कुल के खुदा खैरियत है मतलूब। जिन लोगों की तबीयत खराब है उनको कहेंगे कैच वेल सून, और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो उनको कहेंगे विश यू आर वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में हमेशा हमेशा कामयाब होते रहें। जी आमीन।

0: के हो तो आवाज भी सिंची है। GFM 88 नेटवर्क सिंची आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरो
2: सिंध के माथे का झूमर
0: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: मुतमिन। एड्रेस ए टू जेड यूनिफार्म जीपीओ रोड लाड़कानो। राबते जलाए मैनेजर वकार अली। मोबाइल नंबर 03131175762।
1: खुशखबरी, लाड़काणे शहर जो मशहूर ए मेडिकल जे दुनिया जो वडो नालो डॉक्टर असदुल्ला महर MBBS FCPS गोल्ड मेडलिस्ट सीनियर कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन। हिते हडन ए जोड़न जो सूर, कुन रग जो सूर, वाई ए चेल जो सूर, वडी उम्र जे माण्हुन ए नंढन बारन में हडन ए जोड़न जा मसला, फ्रैक्चर, फिरेल पेरन ए जंगुन के ठीक करण, हडन ए जोड़न जे हर किस्म जो ऑपरेशन जदीद मशीनन जरिए कयो वेंदो आहे। डॉक्टर असदुल्ला महर हडन ए जोड़न जो माहिर सर्जन। टाइम आचर खां जुम्मो, रोजानो सुबुह जो 11 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं। एड्रेस बैतुल शिफा बोन ट्रामा क्लिनिक, लखनऊ देरो चौक, लाड़काणो। याद रखंदा, डॉक्टर साहब हर छंछर ते सखर शहर में मरीजन जो मुआइनो कंदा आहिन। एड्रेस सखर टाउनशिप, आरएफ बिल्डर्स, बंगलो नंबर 20, सेक्टर नंबर 3, घोड़ा गेट, सखर। टाइम मंझन जो 2 बजे खां शाम जो 6 बजे ताईं। वधीक राबते जे लाइ मोबाइल नंबर 03368640025, फोन नंबर 07440571999।
2: दुनिया में असां जे मुल्क में शुगर जो मर्ज तेजी सां वधी रहयो आहे।
3: इन जा मुख्य कारण मौरूसी, मोटापो, वर्जिश न करण, गैर मयारी ग़िज़ा जो इस्तेमाल वग़ैरह आहिनि। शुगर जे मर्ज जूं ख़ास ख़ास अलामतूं ही आहिनि: बार बार पेशाब जो अचणु, अचानक वज़न घट थी वञण, बुख घणी लॻण, मथे ते दॿाउ हुजण, हथनि ऐं पेरनि जो सड़ण, सॼे जिस्म में बाहि वांगुर महसूस थियण, कमज़ोरी महसूस थियण, पेरनि में फट थियण, टंगुनि में गिढियूं पवण, ऐं कंध जो गोरो थियण। वधीक मालूमात ऐं इलाज जे लाइ बकाई यूनिवर्सिटी कराची जो सनद याफ़्ता डॉक्टर नदीम अख़्तर कोराई, MBBS MPhil कराची यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी।
2: वेहण जो हंध गुलाम अकबर शुगर क्लिनिक, साम्हूं म्युनिसिपल स्कूल, लाड़काणो।
3: टाइम रोज़ानो मंझंदि जो 3 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं, ऐं आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां मंझंदि जो 1 बजे ताईं। यादि रखंदा, जुमे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि रहंदी।
2: मोबाइल नंबर 03432515217।
4: GA FM 88
5: सिंध की आवाज।
6: नेक्स्ट कॉलर, हेलो,
7: अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
7: बाजी सखर का।
6: सखर से कौन? ओके जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। 03000113488 के ऊपर। नेक्स्ट कॉलर, हेलो हेलो
7: हेलो
6: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं?
7: वालेकुम अस्सलाम, SRH रोड़ी से।
6: SRH रोड़ी से, कैसे ठीक ठाक हैं आप?
7: बिल्कुल खैरियत से।
6: अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या सुना रहे हैं आप हमें?
7: नाच
6: सुना रहे हैं, सुना दें।
7: शाहे मदीना, शाहे मदीना, ये शरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली।
6: ओके जी, और कुछ कहेंगे?
7: बस प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा चल रहा है।
6: थैंक यू।
7: ठीक है, ओके, अल्लाह
6: हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और नाथ हम प्ले करते हैं जी SRH की, और इसी के साथ हम चलते हैं आगे।

0: सक्कर की आवाज।
1: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और बेजान पन, अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-450192।
2: अदी दसु तडे मुझी नोखे ओला अदी को नती थी।

0: सचल की सरमस्त धरती
1: आखिर मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं जी, और कॉल करके अपनी पसंद की कोई भी नात, कसीदा या फिर मनकबत सुना के वो उसी टाइम पे प्ले करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉलर मेरे से लाइन पे मौजूद है, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो,
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक जी, मैं भी ठीक हूँ। मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: जी जी सुन रहा हूँ।
1: कुछ सुनाएंगे हमें?
2: जी जी सुनाऊंगा।
1: सुना दें
2: तो खुश किस्मत
1: आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो,
2: जन्नत में घर मिली थी।
1: ओके, क्या क्या टाइटल है इस कलाम का?
2: तो खुश किस्मत है।
1: तो खुश किस्मत,
2: हाँ हाँ,
1: किसका है ये?
2: पता नहीं,
1: मिल सके चले, मैं इसको देखती हूँ। अगर ये नहीं मिलता तो हम कुछ और प्ले कर देंगे, ठीक है?
2: मेरे दोस्त हैं।
1: हाँ जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। और हमेशा हाफिज गुलाम अहमद सावल भाई की आवाज जो है ना, वो बहुत डिस्टॉर्शन के साथ आती है। तो खैर, 03000113488 जिसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, और इसी के साथ हम नेक्स्ट कलाम की तरफ चलेंगे। और मेरे पास मौजूद है एक खूबसूरत कलाम। अच्छा, मेक श्योर जो आप सुना रहे हो ना, आपको फिर उसका टाइटल और उसका सिंगर बताओ, ठीक है जी, ताकि हम उसको इजीली सर्च कर सके और इजीली वो हमें मिल सके। अगले जो कलाम प्ले करें, कलाम के साथ न्यूज ब्रेक और फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। अगला जो हमारा सेगमेंट होगा दैट इज हरा भरा पाकिस्तान, जिसमें एहतिसाम हमारे साथ मौजूद होंगे इस वीक, तो सुनना मत भूलिएगा, ट्यून इन करके रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुजार है।

फैजगंज बरसा बिजली जो थंबो किरण साहब बाड़ी फोत गोड़ जान मोहम्मद में ट्रक बिजली तार में फासन साहब थंबो कर में रान थे बिन मासूम भेनर मथा किरी पो हादसे सबब अनम शीनो फोत महक शीनो जख्मी।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252578 6।
4: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Hardiya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
7: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
7: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
6: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
7: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
6: 0331252578
7: जी हाँ बुड़ी 231 525 786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़

0: वो ये यहाँ है, यहाँ का सीड बैंक, और वो सीड बैंक ये कहलाता है कि आप दुनिया भर से जितने भी बीज मंगवा रहे हैं उन बीजों का यहाँ होना जरूरी है। वो एक जैसे हम नॉर्मल बैंक हमारा करेंसी बैंक होता है, ऐसे ही सीड बैंक है। और उसकी खासियत ये है कि वो सिर्फ इन बीजों को ये कहना चाहिए कि महफूज नहीं करता, बल्कि जो हम कहते हैं कि जो फसल को मिलाकर कोई नई चीज बनाई जाती है दो बीजों को, उसके सिलसिले में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अब मुल्क भर से यहाँ साइंसदान जमा किए जाते हैं, एक खास सीजन होता है तब तक वो किसी चीज पर रिसर्च करते हैं, फिर प्रॉपर ट्रेन फार्मर्स को बुलाया जाता है अगस्त सितंबर में, और फिर वो उन बीजों को लगाते हैं, और उसके बाद जो चीज सामने आती है, फसल जो उगती है, फिर रिसर्चर्स को बुलाया जाता है कि अब आकर देखें कि ये जो फसल हमने उगाई है इसमें प्रोटीन, इसमें दीगर चीजें, गजाई जरूरियात कितनी अच्छी हैं, और क्या वो लोगों के इस्तेमाल के लिए हैं या लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं है। फिर साथ ही इस मंसूबे में खलाई टेक्नोलॉजी भी शामिल है, और खास तौर पर इस वक्त तो हम जब बात करते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से हम सोचें तो बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन पाकिस्तान का खलाई शोबे में चीन के साथ है। हाल ही में दो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनको पाकिस्तान से बुलाया गया है, वो यहाँ तरबियत हासिल कर रहे हैं। अब वो दो एस्ट्रोनॉट्स में से एक एस्ट्रोनॉट चीन के खलाई जहाज के साथ खलाई मिशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जाएगा भी, और वो चीन के किसी खलाई प्रोग्राम में पहला शख्स होगा, पहला गैर मुल्की होगा, और वो पाकिस्तान को एजाज हासिल है कि वो पाकिस्तानी होगा। और दूसरा जो फर्द तरबियत के लिए यहाँ मौजूद है वो यहाँ जो उनका साइंस सेंटर है ग्राउंड पे वहां मौजूद रहेगा, तो साइंस के हवाले से भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इस चीज को जिक्र करने का मकसद ये था आज के पाकिस्तान में हम देखते हैं कि कई तरह के काम हो रहे हैं मुस्तकबिल के हवाले से, और जो गजाई जरूरियात हैं चाहे वो 1 अरब 40 करोड़ से जायद अफराद की चीन में हो या पाकिस्तान में, हम 25-26 जो भी ऑफिशियल नंबर्स हैं करोड़ की अगर हम बात करें, जो आबादी है हमारी उसके हवाले से अगर हम बात करें, तो गजाई जरूरियात होना बहुत जरूरी है। और ये इस तरह के सेंटर्स, इस तरह के जदीद मराकज, ये बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं कि आप कैसे मुस्तकबिल की पेशबंदी कर सकते हैं। हम गंदम उगाते हैं लेकिन वो गंदम फिर हम एक्सपोर्ट करने के बाद वापस इम्पोर्ट कर रहे होते हैं अगर कमी हो जाती है। चावलों का भी यही हाल है, दीगर फसलों का भी यही हाल है, तो इवन चीनी का भी, गन्ने का भी। तो फिर ये जो सेंटर्स हैं बेसिकली ये आपको तैयार करते हैं कि आप कैसे रिसर्च के साथ अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, और दूसरी बात ये कि वो आप कैसे इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं फिर इतना बढ़ाने के बाद, कि उसमें क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो बहुत जरूरत है पाकिस्तान में भी इस तरह के सेंटर्स की काम करने की। और जो इम्पोर्टेंट चीज हमें नजर आती है वो हर शोबे में है, वो एग्रीकल्चर में भी है। समंदरी जो आबी तहकीक है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें भी है, और खलाई तहकीक में भी है। वो ये कि किसी भी रिसर्च को इंडस्ट्री के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, अगर हम इंडस्ट्री के साथ नहीं जोड़ते तो फिर मुश्किल होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होगी।
1: ओके जी, एहतिसाम आप मुझे सुन सकते हैं?
0: जी जी मैं सुन रहा हूँ।
1: ओके जी, तो मजीद इस बारे में आप हमें और क्या बताएंगे?
0: बस एक चीज जो कि मैंने नुक्ता बुनियादी छोड़ा आखिर में, मेरा ख्याल है इस पर हम थोड़ी बात और करेंगे, और वो ये कि पाकिस्तान में जो रिसर्चेस हो रहे। गुज़श्ता दिनों मेरा एक यूनिवर्सिटी में जाना हुआ और वहाँ एक सेशन था जिसमें जो PhD स्कॉलर्स थे और जो MPhil के स्कॉलर्स थे उनको टीचर्स बता रहे थे कि आपने दाखिला ले लिया है, आपका पहला साल गुजर चुका है, तो अब आपने करना क्या है आगे जाकर? आप जो सोच कर आए हैं पाकिस्तान से कि मैंने ये करना है वो करें, या आप ये देखें कि इस वक्त मार्केट क्या है, चीन की मार्केट क्या है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज उन्होंने ये बताई हमें कि अब आपने जो कुछ भी प्लान करना है 2026 में खड़े होकर चीन में अगर आप पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप चीन में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने लिए देखें या यहां से नई चीजें सीख कर जाएं, तो चीन में अगले 5 साल के लिए जो कुछ अनाउंस हो चुका है कि हमने बिजली कैसे पैदा करनी है, ہم نے زراعت کو کہاں لے کر جانا ہے, وہ پورا ایک پلان ہوتا ہے 5 ایئرس میں. اس پلان کے مطابق اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ضرورت کہاں تک ہے اور آپ کن چیزوں میں آگے جا سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ یہ کریں جو کچھ آپ سوچ کے آئے تھے کہ میں یہ پڑھوں گا, اب آپ وہی پڑھ رہے ہیں. تو امپورٹنٹ چیز جو وہاں سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ انڈسٹری کے لوگ موجود تھے, اکیڈیمیا کے لوگ موجود تھے, اسٹوڈینٹس موجود تھے, گورنمنٹ آفیسر موجود تھے, اور وہ یہ پلان کر رہے تھے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں جو ریسرچ ہونی ہے وہ انڈسٹریل بیسڈ ریسرچ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی ریسرچ کرتے ہیں اور یہ چاہیں کہ آپ مارکیٹ میں شامل ہو جائیں, آپ کو اچھی اپرچونیٹیز مل جائیں, بلکہ آپ نے انڈسٹریز کو سولوشنز دینے ہیں, آپ نے ان تمام مشکلات کا حل نکالنا ہے جو اس وقت انڈسٹری کو درپیش ہیں, تو یہ سسٹم آگے بڑھتا ہے. تو بیسیکلی ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہمیں نظر آ رہی ہے, اور وہ کمبائنڈ ایفرٹ یہ ہے کہ جو ریسرچر ہیں وہ اپنی ریسرچز کو انڈسٹریز کے پرابلمز ساتھ آرگنائز کریں, ان کے ساتھ انٹیگریٹ کریں, تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ جب میں کوئی آئیڈیا دوں گا انڈسٹری کو اس کا فائدہ ہوگا, میرے لیے جاب اپرچونیٹی ہے اور فائدہ ہوگا, بجائے اس کے کہ میں ریسرچ کر لوں اور پھر سوچوں کہ میرے پاس یہ آئیڈیا ہے اب اس پر کام کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی ڈفرینٹ اپروچ ہے. پاکستان میں سوشل سائنسز کا بھی حال ہمارے سامنے ہے کہ ہم ایسی ایسی چیزوں پر ریسرچ کر رہے ہیں جن کا سوسائٹی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اور وہ ریسرچ برائے نام ریسرچ ہے, لیکن اگر ملک نے ترقی کرنی ہے, ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے اور آگے جانا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی انڈسٹریز سے پوچھیں کہ آپ کو کیا مسائل ہیں اگلے 5 سالوں میں, اور ان مسائل

0: सॉर्ट आउट करके देख के उसको एक जगह रखकर फिर यूनिवर्सिटीज को ये प्रपोजल दें कि ये सेक्टर्स हैं जिनमें हमें काम करना है, आगे जाना है, इसके लिए आप लोग तैयार करें जिनकी रिसर्च इसमें हो, फिर अगले 3-4 सालों में वो लोग तैयार हों, जैसे 5 साल मुकम्मल हों तो वो उस इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए तैयार हों और वहां की जो मुश्किलात हैं उनको खत्म करने के लिए तैयार हों। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी मॉडल पर दुनिया भर में काम हो रहा है, चाहे वो आप अमेरिका की बात करते हैं, चाहे आप चाइना की बात करते हैं या दीगर ममालिक की बात करते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो अपने लोगों को ये मोटिवेट करते हैं कि आपने तहकीक करनी है, तो इंडस्ट्री को साथ लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान में बेपना टैलेंट मौजूद है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी है, सनती के अलावा जो हमारा जरात का शोबा है उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हम कैसे एक जमीन पर एक साल में 2 से 3 बार फसल उगा सकते हैं, उसके लिए क्या रिसर्च होनी चाहिए, कौन सी फसल ऐसी है जो हमें फायदा दे सकती है उसके लिए रिसर्च होनी चाहिए, हमारे पास अगले 5-10 साल का प्लान हो कि हमने अब कपास इम्पोर्ट करनी है ज्यादा जैसे हम पहले किया करते थे, हमने गंदम इम्पोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, हमने गन्ना एक्सपोर्ट करना है, तो ये सारी चीजें, राइस एक्सपोर्ट करना है, खासतौर पर पाकिस्तान के फल दुनिया भर में मशहूर है वो एक्सपोर्ट करना है, और फिर कुछ सेक्टर्स को मार्क करके उसके बाद पर काम किया जाए और जाए कि हम कैसे इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर।
1: ओके जी, और लास्ट में सुनने वालों के लिए कोई खास पैगाम देना चाहेंगे? इंतजाम
0: बस जनाब, कोई पैगाम क्या देना है, बस ये है कि जो काम भी कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें, अपनी पूरी फोकस के साथ करें। हम ये जो सोचते हैं कि वक्त है निकल जाएगा, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, उसको दयानतदारी के साथ और मेहनत के साथ अगर करें तो वही आपका जो वक्त है वो मजीद अच्छा हो जाता है, और अगर आप ये सोचें कि ठीक है काम निकल रहा है बस चलने दो, तो फिर चलने दो में फिर हम दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मेहनत करना है।
1: ऑब्वियसली सिलेक्टेडली, थैंक यू सो मच एहतिसाम, आप हमारे साथ रहे और अपना कीमती वक्त निकाल के हमें आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और ये था आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान। तो आज का सेगमेंट हमारा यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी सेगमेंट में दोबारा एक और गेस्ट के साथ हमारी चर्चा होगी एक नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ भी जाते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा,
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा,
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
5: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तो GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
6: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार लाइन लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हाँ, 2315525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

योगी जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपका और मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है जी. और वापस आ चुके हैं जी एक अदद ब्रेक के बाद, और इसी के साथ हम आगे मूव कर रहे हैं. और इसके साथ सर जी कॉमेंट्स और मैसेजेस की तरफ भी आते हैं, तो बहुत सारे कॉमेंट और मैसेजेस और साथ में आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स. और इसके अलावा जी रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रही हैं जी, एंड मैसेज नहीं सॉरी कमेंट कर रही हैं. सो थैंक यू सो मच रेहाना. और इसके अलावा जी कॉल्स लेते हैं 03000113488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर, KTN नेटवर्क पर, KTN
1: जिंदगी है मोहब्बत की मिठास,
2: फूलों फलों की खुशबुओं से।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM
5: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
6: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
6: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हाँ, बुड़ी 331-5526।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: 1:15 p.m. This time check.
1: Muhammad Umar Bugyo, Institute of Nursing in
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, जमीन से जाकर जमीन से आसमान तक, जिंदगी से मौत तक, सांस से तर्द से खुशी तक, दिल से दर्द तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लारकाना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम है व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप खूबसूरतियां हासिल करना चाहते हैं जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको बताएंगे कि इस प्रोग्राम में किस तरह से आप लोगों को ना सिर्फ खूबसूरतियां मिलने वाली हैं बल्कि आप अपनी खूबसूरती को जो है ना वो हमेशा के लिए मेंटेन भी रख सकते हैं, खूबसूरती को हमेशा के लिए अपने पास लॉक भी कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों को इस प्रोग्राम में जाने को मिलती हैं और बहुत ज्यादा वाले लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि भाई जानना चाहते हैं कि खूबसूरती कैसे मिलने वाली है। तो बिल्कुल सही प्रोग्राम है व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो जो कि आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहां पर आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है, हम आपके साथ मौजूद रहने वाले हैं पूरे 3 बजे तक, यानी कि पूरे 2 घंटे हमारे पास मौजूद होते हैं और इन 2 घंटों में मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो बहुत सारी वाली बातें करूंगी। आप लोगों के साथ जो है ना वो बहुत ज्यादा वाली बातें करने के साथ साथ आप लोगों की बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि हम सुनेंगे। प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं आप लोगों के प्यारे प्यारे फीडबैक। और जनाब इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। जी हाँ, जी हाँ, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद यही है और दुआ भी यही है कि हमेशा खुश रहें, शादाबाद रहें और हमारे साथ रहें। और जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कि जहां जहां तक हमारी आवाज आ रही है तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने भाई सारे अपने काम कर लिए, बस हमारे इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल हम आप लोगों के साथ साथ मौजूद हैं, पूरे 3 बजे तक आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो है ना वो सबसे पहले आगा से प्रोग्राम किया जाता है और आगा से प्रोग्राम जो है ना वो हम करेंगे। और आप लोगों के लिए प्रोग्राम के स्टार्टिंग में एक बहुत प्यारा सा कसीदा हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो बिना टाइम को वेस्ट कि आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा कसीदा लिस्ट में लगाते हैं। उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आप इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं।

ओके जनाब, और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आके सिद्रा के साथ मौजूद है। और मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, सामने प्रोग्राम होना चाहते हैं जनाब, तो तरीकेकार क्या है वो बताएंगे आप लोगों को। लेकिन आज के प्रोग्राम में आप लोगों से यानी कि टॉपिक क्या पूछा जा रहा है उसकी जानिब आ जाते हैं। तो फिर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो आज जो मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है वो कुछ इस तरह से होगा कि आप मुझे बताएंगे कि मुहर्रम का पैगाम जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए या फिर सब इंसानों के लिए। बिल्कुल जी, आज आप मुझे ये बताने वाले हैं कि मुहर्रम का जो पैगाम है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है या फिर सब इंसानों के लिए है। मुझे इस सवाल का जवाब जो है ना वो आप बताने वाले हैं अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं। शामिल प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेलफोन उठाएंगे तो बल्कि राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो LRKANA FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। आप जैसे ही सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। पेज के ऊपर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम यानी कि व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है या जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको ये पता चल सके कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके जी, सो आज के प्रोग्राम का जो सवाल होने वाला है वो बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताएंगे कि मुहर्रम का जो पैगाम है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए या फिर सब इंसानों के लिए। बहुत ही एक आसान सा मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया है, इसका जवाब आप मुझे बताने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और साथ साथ आप लोगों को बता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो भाई यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताए जाते हैं तो वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं यानी कि अगर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र हो तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये आप लोगों के खूबसूरती के मुताबिक तैयार किए गए हैं, आप लोगों के स्किन टाइप के हिसाब से तैयार किए गए हैं। मर्द हजरात हो, खवातीन हो, हर कोई इन्हें इस्तेमाल कर सकता है, आराम से इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। और मजे की बात है जनाब कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों जो है नेचुरल अजाज से तैयार शुदा है और आप लोग जो है ना इन्हें आराम से लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेटेड फार्मूले के साथ तैयार किए गए हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को पता है कि भाई बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद और हर तरह का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी टाइप का प्रोडक्ट तो अवेलेबल ही नहीं है, तो आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको नाइट क्रीम मिल रही है, साबुन मिल रहा है, फेयरनेस क्रीम मिल रही है और एक्नी ट्यूब मिल रहा है, फेस वॉश मिल रहा है और लोशन मिल रहा है, हेयर रिमूवल लोशन मिल रहा है। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कितने अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जब आप इस्तेमाल करेंगे जभी तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये प्रोडक्ट जो हैं वो वाकई कमाल के हैं। तो आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायल कर रहे हैं 03-15-799-0595। ये नंबर आपकी आसानी के लिए है, आप जल्दी से इस नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए, कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि आप ही लेना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। ओके जनाब, सो पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए मोहब्बतें होती हैं। तो जल्दी जल्दी से पोस्ट के ऊपर जो है ना वो आइए और पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ चाचा खालिद जूनी जो प्रोग्राम में मौजूद है, कहते अस्सलाम वालेकुम बेटा सिडो, हाउ आर यू, हो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, कहते आई एम फर्स्ट हु वॉचिंग योर शो, थैंक यू सो मच चाचा, कहते येस्टरडे आई, चलिए आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, थैंक यू सो मच, और आपको अब मिल जाएंगे क्योंकि इरफान सियार साहब जो है ना वो अपने वादे के बड़े पक्के हैं। और फिरोज अली ब्रोही हमारे साथ मौजूद है, खुशामदीद कहा जाता है आपको। और गुलाम रहीम बलूच हमारे साथ, कहते सलाम, जबरदस्त प्रोग्राम आपका, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। प्रिंस अफजल शाहीन हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, और आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। वहीद वफाई हमारे साथ मौजूद, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिद्रा जी, माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम, फ्राम जेकब आबाद से आपके साथ हैं, थैंक यू सो मच वहीद वफाई, आपको खुशामदीद कहा जाता है। और बिलाल अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, की आए हो, मौला अली फरमाते हैं मोहब्बत करते हो तो इजहार करो, बाद में मजबूरी का सहारा लेकर छोड़ देना वफादारी नहीं होती, ये तो सही बात है। और वासा भाई हमारे साथ मौजूद है, कहते मुझे प्यारी बहन सलाम, वालेकुम अस्सलाम, माँ सफा ठीक है, आप बताए की आयो, ठीक ठाक आयो। वरियामली जतोई हमारे साथ, कहते सिदरा में
ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں اس پیارے پروگرام میں. آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. برکت رمضانی جمالی بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بلوچ جعفر آباد بلوچستان سے. اوکے جی, بہت شکریہ, آپ کا بھی خوش آمدید. اور بلال کہتے ہیں کہ اللہ اس دل کی مدد فرمائے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. کیا بات ہے. اوکے جی, اور آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے, اپنے ہونے کا احساس دلاتے جائیے. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے, کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ ہوتی ہے. اوکے جی, یہاں پر ٹائم ہو جاتا ہے, ذرا ہم شارٹ کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو آپ کا ہمارا ساتھ پوری پوری 3 بجے تک گاہے سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے, ہم جلدی واپس آتے ہیں.

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM
3: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हाँ, गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
4: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, बुड़ी 231-25-7786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

ओके जनाब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मादरी और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंड ईज इन ब्यूटी शो. बिल्कुल जनाब, सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप लोगों की खूबसूरती आपको मिलने वाली है. बस ये आप याद रखा करें, अक्सर जो होता है ना प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप लोगों को चीज समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में अगर आप जाते हैं तो आप लोगों को मिलते हैं, लेकिन मिलने के साथ साथ जो है ना आप लोगों को रिजल्ट भी वैसे दें जैसे आप हासिल करना चाहते हैं. तो हम आप लोगों को बताते हैं, गाइड करते हैं कि आप लोगों ने किस प्रोडक्ट की तरफ जाना है और जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे. बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा वाली बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और इसी के साथ साथ आप लोगों को वेलकम इन खुशामदीद भी कहा जाता है. जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों की मोहब्बत और समाज और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है तो वो भी जरा आप लोगों को बता देते हैं. तो आज के प्रोग्राम के हिसाब से आप लोगों से जो मैंने सवाल पूछा है वो बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताइए कि मुहर्रम का पैगाम जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है या सब इंसानों के लिए. आज आप इस सवाल का मुझे जवाब बताने वाले हैं और साथ ही साथ जो है ना अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मुझे वो भी बताते जा रहे हैं. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों के लिए जो ये सारे प्रोडक्ट है ना व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, ये सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर रहे हैं. लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसा डाउट है कि कहीं पर अगर आपको नहीं मिल रहे हैं या फिर आपके सिटी में आपके करीबी जनरल स्टोर पर आपके गोठ में ये प्रोडक्ट व्हाइट एज के नहीं मिल रहे हैं तो आपने बस इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लेना है और नंबर के ऊपर आप जैसे ही रब्ता करते हैं तो आपको इजीली जो है ना ये तमाम प्रोडक्ट्स आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल करा दिए जाते हैं. तो नंबर है 03 15 799 0595. ये नंबर आप लाजमी डायल करें ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए. जल्दी से आप जो है ना प्रोडक्ट अवेलेबल कराइए ताकि आप भी परचेज कर सकें और आप भी इस्तेमाल कर सकें. ओके, तो इस्तेमाल करने की जाने बातें हैं. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि गर्मियों के सीजन में भाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और मैं भी इस चीज को इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ कि अगर आप गर्मियों का सीजन आता है ना तो हम जैसे हमारी सर्दियों में रूटीन रहती ना वो गर्मियों में जो ना थोड़ी अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो अक्सर जो होता है ना हमारे चेहरे की स्किन जो है गर्मियों में काफी ज्यादा खराब हो जाती है, ड्राई तो हो ही जाती है, आपके चेहरे पर जो है ना डलनेस भी काफी ज्यादा आ जाती है, आपके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम भी हो जाता है और खास करके जो टीनेजर्स लोग हमें सुन रहे हैं तो उनके चेहरे पर भी अगर एक्नी का बहुत ज्यादा मसला है तो ये जो व्हाइट एज के प्रोडक्ट आपको बताए जा रहे हैं ना इसमें आप लोगों के लिए हर मसले का हल मौजूद है. अगर आप गर्मियों में ये सोच रहे हैं कि हमने गर्मियों में कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और कौन सा प्रोडक्ट गर्मियों में हमारे लिए बेस्ट रहने वाला है तो आपके लिए व्हाइट एज लवली क्रीम में लेकर आई हूँ. अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ये एक फेयरनेस क्रीम है, फेयरनेस फार्मूला है. और अब ऐसे यानी कि बहुत से मेरे मासूम से लिसनर्स होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि भाई फेयरनेस क्रीम क्या होती है और इसमें क्या डिफरेंस है और नाइट क्रीम में क्या डिफरेंस है. तो आप लोगों को ये चीज बताती चलूं कि जब आप फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना तो फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है जैसे आप कोई भी मेकअप लगाना चाहते हैं या फिर अगर आप ये चीज है कि भाई इसमें एज लिमिट होगी क्या हम छोटी उम्र में लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे या ये क्रीम सिर्फ बड़ों के लिए, तो ऐसा कोई सी नहीं है. व्हाइट एज लवली क्रीम जो है इसे आप हर उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर स्किन टोन की गई क्योंकि ये व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ये वाइटामिन से भरपूर है क्योंकि इसके अंदर 30 वाइटामिन के कैप्सूल ऐड किए गए हैं जिसमें आप लोगों के लिए वाइटामिन B3 है, वाइटामिन ई है, वाइटामिन सी है एंड वाइटामिन डी भी मौजूद है. और उसके साथ साथ बात यहाँ पर खत्म नहीं होती जनाब, व्हाइट एज लवली क्रीम के अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है और वो इसलिए ताकि आपकी स्किन की प्रोटेक्शन हो और आप लोगों को ये जो धूप के असरात है ना जो कि बड़े बुरे असरात आपकी स्किन के ऊपर आ जाते हैं, आपकी स्किन डल हो जाती है, आपके चेहरे की स्किन मुरझा सी जाती है, तो उससे भी आपकी स्किन की जो है ना वो हिफाजत करता है. तो तरीके इस्तेमाल भी यही है कि आपने सुबह या फिर लगाएं या फिर रात को लगाएं या फिर अगर आप कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं तो आप वहां लगा कर जाएं, लेकिन लगाने से पहले अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा. और फेस वॉश लगाने के लिए जो है ना आपके पास व्हाइट एज ब्यूटी सोप या फिर व्हाइट एज का फेस वॉश होना चाहिए. बिल्कुल जी, अगर आप सोप इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट एज का ब्यूटी सोप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो आप व्हाइट एज का फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे जो कि फुल जो है ना वाइटामिन सी से तैयार किया गया है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है,
एंटी एजिंग के लिए है और आपको ग्लो देता है। तो इसके अंदर भी जो है ना विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई भी मौजूद की गई है। तो ये बहुत ही एक अच्छे से प्रोडक्ट तैयार की गए हैं जो कि विटामिन से भरपूर है। और उसके साथ साथ अगर एक्ने प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा आ रहा है, अगर आप टीनएजर्स हैं या फिर एज आपकी बढ़ चुकी है लेकिन एक्ने आपकी जान नहीं छोड़ रही, तो आपके लिए डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब मार्केट में मौजूद है। अगर आप मार्केट जाते हैं और आपको नहीं मिल रहा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब, तो आपको जो नंबर बता रही हूँ उसके ऊपर आप रब्ता करके इजी

की जो है ना वो अपने एरिया के अंदर अवेलेबल करा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से जो है ना आपने डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का इस्तेमाल कर लेना है, जो कि फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है। आयुर्वेदिक फार्मूला मतलब कि ये नेचुरल अजा से तैयार किया गया है, जो कि आप लोगों के चेहरे की ना सिर्फ एक्ने को खत्म करता है, बल्कि आपके चेहरे पर अगर एक्ने के निशानात हों या फिर कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, इस तरह के बहुत से निशान जो कि आप रिमूव करना चाहते हैं, आपको छोटी एज में कोई चोट लगी थी जिसका निशान अभी तक आपके चेहरे पर मौजूद है या फिर कोई जलने का निशान है, तो आप वो सारे निशान को रिमूव कर सकते हैं जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ना सिर्फ ये आपके एक्नी से फाइट करता है, बल्कि ये आपके चेहरे के सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करता है और आपकी स्किन को क्लियर बनाता है और आपकी स्किन जो है वो साफ और शफाफ हो जाती है। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो कि आप नाम लेकर परचेज कर सकते हैं, इजीली आपको कहीं से भी मिल जाएगा। उसके अलावा इस्तेमाल करने के तरीकेकार जो है वो बिल्कुल यही है कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सोने से पहले अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा, हाथों को भी अच्छे से वॉश कीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ जो है ना वो भी क्लीन होनी चाहिए। जब आपके हाथ क्लीन होते हैं, आप अपने चेहरे पर कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आपके हाथों पर अगर ऐसा है कि आपके हाथ ही क्लीन नहीं है, आपने सिर्फ चेहरा धो लिया, उसके बाद जो है ना आपके हाथ भी क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो आपके जरासीम होती है ना जो आपके फेस तक पहुंचते हैं, वो आपके हाथों की मदद से ही पहुंच रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी बात है जो इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है, ख्याल रखेंगे तो आप लोगों की चेहरे की स्किन जो है ना वो खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाएगी। तो खूबसूरतियां जो है ना अब मुझे लगता है कि आपकी खूबसूरती आपके हाथ में है, क्योंकि अब अवेलेबल है। तो हर तरह स्टोर्स पर जाते हैं लेकर पाते हैं, और व्हाइटिश ब्यूटी सोप है या फिर फेस वॉश है, अगर बहुत से लोग जो कहते हैं असा क्रीम नायू लगाईंदा तो तवां साबुण फेस वॉश जो ना ट्राई करे सको था। अगर ये बच चीजों तुम ट्राई करे दिसंदा तो तुम्हें अंदाजो थी वेंदो तो वागे तुम्हें व्हाइटिश का प्रोडक्ट इस्तेमाल करन घुर्जन। और उनखा पो अगर तुम स्टेप खनो था तो तुम व्हाइटिश लवली क्रीम लाजमी ट्राई करे दिसजो, जेका फेयरनेस क्रीम आहे, को टेंशन नाहे तो बाबा हन जा कोई साइड इफेक्ट हुंदा या असांजी उम्र नाहे, असां क्रीम नथा हणी सघो, तो तुम्हारे लिए जो ना व्हाइटिश लवली क्रीम जो वह सफा गेम चेंजर जो कम कंदी, तुम ट्राई करे दिसजो, तुम्हें मजो अची वेंदो। सो बिल्कुल जी तुम सा गड मौजूद आए प्रोग्राम बुधो पया शामली प्रोग्राम थो पया पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो ए तमा किथा असन के बुधो पया केर केर असन सगर मौजूद आ प्रोग्राम जो हिस्सो थींदा वणो आई मु जवा का सवाल पूछो आ है जे जो तमा मखे जवाब दियो पया सवाल कुछ ही आ है तो मुहर्रम जो पैगाम आए सिर्फ मुसलमानन जे लाए आ है या फिर सजी इंसानियत जे लाए।

जी आप लोगों के फीडबैक्स हैं तो आते फीडबैक्स की जानब आते हैं। फहीम शेख हमारे साथ कहते हाय हाउ आर यू सिद्रा मुस्कान मैं ठीक आप बताएं आप कैसे हैं। और चाचा खालिद कहते हैं महरम का फलसफा पूरी इंसानियत के लिए है बेटा से जो यू टॉपिक आंसर ओके। महर इरफान सियाल साहब मरसद मौजूद कहते हैं ग्रेट होस्टिंग मैम आज थैंक यू सो मच सर। और फहीम शेख कहते हैं

वालेकुम अस्सलाम प्यारी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? और नियाज हुसैन मलिक, हाय किशोर भाई हमारे साथ ही, कहते हैं सलाम अदा, खुश आए हो? बिल्कुल ठीक ठाक, तां बुधाए प्यारा बाकी आए हो? और नखा अलावा हैं जी मौलाई मुजाहिद बोजदार टूफ चूसल से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मां ठीक है, तां बुधाए की आए हो? आई तमा चवा उम्मीद आए तो खुश बाश हुंदा, हमेशा खिलंदा मुस्कुराइंदा रहो, आमीन। आई सेम तमा से लाई ये भी दुआ हूं, तमा भी खुश रहो। फहीम कहते हैं टॉपिक सब इंसानों के लिए है, ओके। और मोहम्मद जमान कहते वेलकम एंड खुश आमदी टू यू बुआ जी, वेलकम टू यू मोहम्मद जमान।

मत रखिए, आपको भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और फहीम कहते हैं कि सबको बता रहे हो उसी कारवां के हो, जिंदा तो लौटते नहीं जंगजू हुसैन के, तुमने इमाम वक्त के बाजू कलम के, अब्बास के बदन पे थे बाजू हुसैन के। ओके जी, पोस्ट को आप लाइक और शेयर करते जा रहे हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है ये, आप हमें बताते जा रहे हैं। और साथ साथ मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक आंसर आल इंसानियत के लिए।

चलें कश्यप, ठीक है, फिर आपको मैं अपनी पसंद का कसीदा सुनाती हूँ। और सासा जो है ना, आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं पूरी पूरी 3 बजे तक, क्योंकि पूरी पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ है जनाब प्रोग्राम में। और प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। आप लोगों की प्यारी प्यारी बातें हैं जो प्रोग्राम का हिस्सा है। यहाँ पर प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बिल्कुल जनाब प्रोग्राम में यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापसी आप लोगों के पास ही आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त आलस हिताती मुआहिदे ते सयूं थियण मां साबित आहे त दोहियूं तकरार जे सफारती हल लाइ पुरज़म आहिनि। मफ़ामती यादाश फौरी तौर ते लागू हूंदी। ईरान अबन हुरमज़ खे खोलींदो ऐं अमरीका तेहरान जी पहिरीं नाकाबंदी ख़तम कंदो। पाकिस्तान शरीक सारस खतर जी हिमायत सां सुभाणे तय थियल तकरीब जी मेज़बानी कंदो। सदर ट्रम्प खे तकरार जो पुरमन हल करण ते मुबारक ॾियण सां गॾु भेटा पेश कयां थो। ईरानी क़यादत खे बि अमन लाइ क़दम खणण जी सदर जी निगाह सां ॾिसंदो। अमन अमान में कतर, सऊदी अरब, तुर्किया ऐं मिस्र जो किरदार बि साराह जोॻो रहियो। फील्ड मार्शल सलासम मुनीर जी महिनत, किरदार सबबि इलाइक़े में इस्तक़ाम आयो। खेसि भेटा पेश कयां थो।

पाकिस्तान जो कोशिशूं कामयाब, अमरीका ईरान तय थियल मफामती यादाश्तनामे ते सयूं करे छड़ियूं। मफामती यादाश्तनामे ते हतमी सयूं सुभाणे स्विट्जरलैंड में थींदियूं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं ॿिया सालिस मुल्क शरीक थींदा। अमरीकी सदर ट्रंप ऐं ईरानी सदर पशकान मफामती यादाश्तनामे ते सयूं कयूं। सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान खे बैलिस्टिक मिज़ाइल्स खां महरूम रखण मुनासिब नाहे। तेहरान जो रवैयो मस्बत रहियो त ईरान खे 300 अरब डॉलर जी फंडिंग ताईं रसाई हासिल थी सघे थी। ईरान जा मंझंदि असासनि ताईं ॾींहं जी मुदत ख़त्म नाहे।

असां ॻाल्हियूं में फ़ौजी कार्रवाई खां वधीक हासिल कयो आहे। हासिल कयल कामयाबी खे फ़ौजी कार्रवाई सां भेटी नथो सघजे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाद चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मक़सदु झुकण नाहे हूंदो। जेका गंढ हथ सां खुली सघे उन खे दंदनि सां खुरण जी ज़रूरत नाहे हूंदी। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बाखाई चयो आहे त लबनान में इसराइली फ़ौज जी मौजूदगी मुआदे जी भनकड़ी आहे। इसराइल लबनान ते कब्ज़ो जारी रखियो त ज़रूरी क़दम खया वेंदा। तेहरान जो एटमी प्रोग्राम पुरमन मक़सद लाइ आहे, ख़तम न थींदो। नई रचायल यूरेनियम कंहिं ॿिए मुल्क मुंतक़िल थींदो।

सदाई बजट में आवाम के रिलीफ देने की कोशिश कई है। मुल्क दिफा ए एके खातर सूबन वफाक के पैसा देने जो फैसलो कयो। सदाई एफबीआर हदफ हासिल ना करे सकंदो। एसबीआर जी सूरत हाल बेहतर है। लगे तो हलंदड़ साल एफबीआर हदफ हासिल बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वडे वजीर मुराद अली शाह चयो तो बजट में 300 अरब रूपये की लगभग खसारो है। जिनके वफाक का 2230 अरब मिलंदा। सूबई हदफ 456 अरब रखो पो है। वफाक ए सूबन तय किया है हर कम आइन मुताबिक कंदासी। मुश्किल वक्त में सूबन मुल्क के खातर वफाक के सपोर्ट कर वफाक के ग्रांट पैसा पूरा मिलने ही दींदासी।

सेंधा कोर्ट में वकील तौर पेश थियल कस्टम के वकील मेयर मुर्तज़ा वाप एतराज़ वारे छो एक केस की बुधनी दौरान कस्टम के वकील कानून मूजिब मेयर वकील की हैसियत में केस बयान ला पेश न तो सके। जस्टिस निसार बमरो चो तो जै कानून जो हवालो डनो वे तो उन कानून से अमल क्यों तो अध वकील घर हलया वेंदा। जस्टिस सलीम जैसर रिमार्क्स डा तो केतरा ही वकील सरकारी नौकरियों जाती कारोबार बिन अहदन से मौजूद आन। मुर्तज़ा वाप दलील डींदे मेयर तौर सिंध हुकूमत का पगार न वो है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन मूजिब चूंडियल नुमाइंदो वकील की हैसियत से निजी प्रैक्टिस करे सके तो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
2: 0331252578।

आप सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है. यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है जितनी भी समाते हैं उन तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में और जिन लोगों ने अभी अभी प्रोग्राम सुनना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है उन तमाम

ओके जी, सो इस सवाल का जवाब बताइए और हमारे साथ आप मौजूद है मुझे बताते जाइए, शामिल प्रोग्राम होते जाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए।

जी जी क्या बात है। और साथ ही साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, आप लोगों को बताया जाएगा जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की खूबसूरती जो है वो किस तरह से बढ़ने वाली है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप चाहते हैं कि भाई हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन बताएं तो सही कि हम क्यों इस्तेमाल करें, तो बिल्कुल आपको बताते हैं कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल के बाद आप लोगों की खूबसूरती जो है वो किस तरह से बढ़ती है। सबसे पहली बात तो ये कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम में क्या चीजें ऐड की गई हैं ये आप सुन लें। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स मौजूद हैं। विटामिन ई बीड्स जो होते हैं ये आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और इन बीड्स के अंदर जो है ना जाहिर सी बात है विटामिन्स की क्वालिटीज होती हैं। और उसके अलावा माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन भी मौजूद है। और ये जो एक ऐसा प्रोडक्ट है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। ऐसा नहीं कि अगर जिन लोगों की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है वो नाइट क्रीमें नहीं लगा पाते हैं, वो प्रोडक्ट से जरा दूर भागते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट साबित होने वाला है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया प्रोडक्ट है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ दो दिनों में ही आप लोगों को वाजे जो ना नतज आप लोगों को बाकी जब आप चाहते हैं तो आप लोग जान लें पहले कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपकी जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है। एक मयारी ब्यूटी क्रीम है, ये जल्द को नमी फराहम करती है और चेहरे को नरम मुलायम और तरोताजा रखने में मदद देती है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं बाकायदा तो आपकी जल्द की जो बेरोनकी है ना वो भी कम हो जाती है, चेहरा ज्यादा साफ और रोशन और दिलकश दिखाई देता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब इतनी अच्छी चीजें जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि विटामिन ई बीड्स मौजूद है, माइक्रो

स्पीड फार्मुलेशन मौजूद है जो कि आप लोगों के चेहरे की स्किन की जो ना हिफाजत करती है, आपके चेहरे पर जो है ना वो खूबसूरती को वाजे करती है, आपके चेहरे पर निखार को लाती है। तो अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी खूबसूरती में इजाफा करती है और रोजाना इस्तेमाल आपकी जिल्द को खूब जो ना वो कुदरती निखार और खूबसूरती जो है ना वो फराहम कर देता है। तो आप भी जरूर ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और साथ में अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन फेस वॉश का यूज करेंगे तब तो भाई क्या ही बात बन जाएगी, क्योंकि डी स्किन फेस वॉश भी आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार किया गया है जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है। इसके अंदर जो है ना जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है तो ये आप लोगों की स्किन को जो है ना वो हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी स्किन को जो है ना वो इतना सॉफ्ट और ग्लोइंग बना देता है कि आप खुद ही कहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो वाकई खूबसूरत होती जा रही है। तो डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश जो है ना आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। डी स्किन फेस वॉश आपको इजीली अब मिल रहा है, ये अवेलेबल हो चुके हैं हर जगह पर। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप परचेज करने जा रहे हैं तो साथ में डी स्किन फेस वॉश भी आप परचेज कीजिएगा और दोनों चीजें साथ में इस्तेमाल कीजिए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते जाएं। ओके जनाब, तो डी स्किन फेस वॉश जो कि आप 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इस्तेमाल करें सुबह दोपहर और रात को आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मजीद एक और जो है ना टाइम ऐड करना चाहते हैं शाम के टाइम या फिर किसी भी टाइम 4-5 मरतबा लगाना चाहते हैं तो 4 मरतबा लगाएं, ज्यादा से ज्यादा 5 मरतबा जो है ना या 6 मरतबा, इतनी ज्यादा अगर आप टाइम लगाते हैं कोई भी अगर आप सोप लगाते हैं फेस वॉश लगाते हैं तो उसकी जो असल ऐसा होता है ना कि मैं अगर आप लोगों से कहूं तो सिर्फ 2 से 4 मरतबा जो ना आप लगाया करें, ये ज्यादा जरूरी होता है। बाकी बार बार जो लोग फेस वॉश कर रहे होते हैं पानी से फेस वॉश करना तो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप सोप या फिर फेस वॉश का बार बार यूज करते हैं तो आप लोगों की स्किन पर जो है ना वो नेचुरल ऑयल जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स खत्म हो जाएंगे तो आपकी स्किन जो है ना वो मुरझाना स्टार्ट हो जाएगी, आपके चेहरे पर रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी लोगों की आदत होती है जो कि भाई दिन में 50 मरतबा फेस वॉश करते हैं, 50 मरतबा साबुन का यूज करते हैं, तो उनकी स्किन जो है ना वो वक्त के साथ साथ जो है ना वो रूखी सूखी सी लगती है और उनके चेहरे पर रिंकल्स भी काफी जल्दी आ जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन की जो उम्र है वो काफी ज्यादा हो और आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे तो आप जो है ना लिमिट के अंदर अपना फेस वॉश किया करें। फेस वॉश यानी कि पानी से आप बार बार करें ये अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप सोप इस्तेमाल कर रहे हैं फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 3 से 4 मरतबा जो ना ये ठीक है, उससे अगर ज्यादा हो जाता है तब थोड़ा मसला बन जाएगा। तो फिर आप जो है ना जब इन चीजों को ध्यान में रखते हैं, इन चीजों को आप जो है ना फोकस करते हैं, इन चीजों के ऊपर आप अमल करते हैं तब आप लोगों की स्किन जो है ना वो खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाती है। तो हर एक चीज का एक जो ना वो मिकदार होता है, अगर एक चीज को आप मिकदार के अंदर इस्तेमाल करते हैं, मिकदार के अंदर खाते हैं, जैसे आप खाने के हिसाब से ही ले लें तो अगर आप खाना खाते हैं मिकदार के हिसाब से तो ठीक होता है, जब वो ओवरडोज हो जाता है तब आपकी बॉडी के लिए नुकसान होता है। तो बिल्कुल वैसे ये प्रोडक्ट्स का भी जिक्र है, अगर आप मिकदार के अंदर चीजें ऐड करते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा, अगर मिकदार से ज्यादा यूज हो जाता है तब थोड़ा आपके लिए टेंशन का बायस बन सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई ये सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए तो आपने ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आप जो चीजें अपनी स्किन के साथ कर रहे हैं क्या वो बैलेंस के साथ चल रही हैं या फिर ओवरडोज हो रहा है, कि आपको ये लग रहा है कि अगर हमने जितने सारे प्रोडक्ट्स लगा लिए स्किन के ऊपर तो हमें ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आप लाइट वेटेड फार्मूले वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करें और थोड़े बहुत से प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करें जो कि आप लोगों की खूबसूरती को निखारते रहें, आप लोगों के चेहरे की जो खूबसूरती है उसे बरकरार रख सके। आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज्यादा है अच्छी, तो आप उसका ख्याल रखें, आप लोगों के बस की बात होती है। तो जल्दी से अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इजीली आपको कहीं भी मिल रही है, आप जाइए परचेज कीजिए और जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। और साथ से डायल कर रहे हैं 03-15-799-0595, जल्दी से नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's time to commercial break. जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: FM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: सकरन मेहरापुर मातली अर्चनाव लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। ब्यूटी शो आप लोगों तक पहुंचा जा ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर टीज कर रहे हैं और बता रहे हैं, अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए डायल करते जा रहे हैं 03157990595। जल्दी से नंबर के ऊपर रब्ता करते जाइए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए। उसके अलावा हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, तो जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर मैं सद मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके, सर प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जा रहा है जनाब प्रोडक्ट के बारे में, और अगर प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है तो जाहिर सी बात है आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक तैयार होने वाले प्रोडक्ट है। अगर आप जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो आप लोगों को मैं बता दी चलूँ, जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, ये ना सोचा करें कि भाई जो सिद्रा हमें प्रोडक्ट बता रही है ये लड़कियां लगाती हैं क्रीमें, तो लड़कियां लगाती हैं। अरे भाई, जमाना चेंज हो चुका है, अब ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं जो लड़के लड़कियां दोनों ही लगा रहे हैं। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना नाइट क्रीम ही आप इसे रात के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोई अच्छा सा फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन फेस वॉश आपके लिए मौजूद है, जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को क्लीन बनाता है, आपकी स्किन को क्लियर करता है और आपकी स्किन को हमेशा ग्लोइंग बनाए रखता है। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से तैयार शुदा होने वाले प्रोडक्ट है, अब मार्केट में अवेलेबल है, आप इजिली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। तो आप जाइए, आप मालूम कीजिए जरा आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिल रहे हैं या फिर नहीं, मिल रहे हैं तो परचेज कीजिए, नहीं मिल रहे तो आपने जो है ना नंबर बताया जा रहा है आपको प्रोग्राम में उसके ऊपर आपने रब्ता करते जाना है। तो ये जनाब बहुत ही आसान से जो है ना वो फार्मूला है कि आप लोगों ने किस तरह जो है इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है और किस तरह से आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करते जाइए और इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से रिजल्ट दे रही है, और 2 रातों के इस्तेमाल से रिजल्ट दे रही है वो भी शर्तिया, क्योंकि जनाब ये डॉक्टर्स की तस्दीक शुदा जो है ना वो प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि आप ये सोचे कि भाई ऐसे कोई नॉर्मल फार्मूला है, ऐसा कोई सी नहीं है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार शुदा होने वाला प्रोडक्ट है। और जिन लोगों की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है ना, यानी कि वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते, कोई क्रीम उनके चेहरे पर सूट नहीं करती है, तो वो लाजमी ट्राई करके देखिएगा जी स्किन ब्यूटी क्रीम को, आपको यकीनन बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।

आकाश अली हमारे साथ हैं, कह रहे हाय आप ही आप कैसी आकाश अली पीर साधु फ्रॉम मोरो। आकाश भाई आपको खुश आमदीद कहा जाता है। और चाचा खालिद क्या कहते हैं, लास्ट सैडी लिंक, दो घंटे आज के भी गुजर गए, मैं 1:15 पर आपका शो ज्वाइन किया, अब खत्म हो चुका है सैटरडे पर। बिल्कुल जी आपको दोबारा से हम ज्वाइन करेंगे। तो बहुत शुक्रिया चाचा, आप हमारे साथ मौजूद रहे पूरे प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया। और सनाउला बिरोही कहती है असलामुअलैकुम अदीब कैसी है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आप भी हमेशा खुश रहे प्यारे भाई।

नाम से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से आप हमारा प्रोग्राम डेली सुन यानी कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहता है। बस जुम्मे वाले दिन हम

जो है इजाजत लेने का वक्त भी करीब आ चुका है, तो आप लोगों से इजाजत भी लेंगे। चाचा खालिद कहते हैं अफकोर्स कुरान में रूह की राहत मौजूद है। बिल्कुल जी, जो लोग अपनी जिंदगी में सुकून तलाश कर रहे हैं, एक मरतबा आप कुरान पढ़ के देखिए जरा तफसीर के साथ और जरा ध्यान के साथ। और बख्तली सियाल हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। मोहम्मद जमान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेते हैं, वरी इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात मुझे थी सेटरडे 5 जुलाई सरो ख्याल रखना। मुख्य पांची दुआन में याद रखना कि का गलती थी तो माजरत कयां थी, जिनका फीडबैक रहती वही आए, जिनकी फरमाइश रहती वही आए, या को अड़ो लफ्ज़ गाल है सुठो न लगो हो तो माजरत क्यों था मोकलानी ना ही। बाबू सिंह सलामत, साथ सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मिश्र जो किरदार बसा राजोग रहे हो फील्ड मार्शल सिद्धार्थ मुनीर जी मेहनत किरदार सबब इलाके में इस्तकाम आयो कैंस भेटा पेश कया था।

पाकिस्तान जो कोशिशूं कामयाब, अमरीका ईरान तय थियल मफ़ामती यादाश्त नामे ते सयूं करे छॾियूं। मफ़ामती यादाश्त नामे ते हतमी सयूं सुभाणे स्विट्ज़रलैंड में थींदियूं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं ॿिया सारस मुल्क शरीक थींदा। अमरीकी सदर ट्रंप ऐं ईरानी सदर बशान मफ़ामती यादाश्त नामे ते सयूं कयूं। सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान खे बैलिस्टिक मिज़ाइल्स खां महरूम रखणु मुनासिब नाहे। तेहरान जो रवैयो मस्बत रहियो त ईरान खे 300 अरब डॉलर जी फंडिंग ताईं रसाई हासिल थी सघे, असां करे सघूं था। सफारती अमल लाइ 60 ॾींहनि जी मुदत हतमी आहे। असां ॻाल्हियुनि में फ़ौजी कार्रवाई खां वधीक हासिल कयो आहे। हासिल कयल कामयाबी खे फ़ौजी कार्रवाई सां भेटे नथो सघिजे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाग चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मक़सदु झुकण नाहे हूंदो, ज़रूरत नाहे हूंदी। ईरानी परॾेही वापार जे तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त लबनान में इसराइली फ़ौज जी मौजूदगी मुआहिदे जी भञकड़ी आहे। इसराइल लबनान ते कब्ज़ो जारी रखियो त ज़रूरी क़दम खया वेंदा। तेहरान जो एटमी प्रोग्राम पुरमन मक़सदनि लाइ आहे, ख़तम न थींदो। नई रचायल यूरेनियम कंहिं ॿिए मुल्क मुंतकिल थींदो। लबनान समेत समूरनि महाज़नि ते जंगबंदी, हिकु जी ख़ुदमुख़्तियारी जो एतराम, अमरीकी बहरी नाकाबंदी जो ख़ात्मो, आबना हुरमुज़ जी मुकमल तौर ते बहाली। ईरान ऐं अमरीका में तय थियल 14 नुक़्ता साम्हूं अची विया। ईरान जे नए सिर तामीर लाइ 300 अरब रुपियनि जो मनसूबो शामिल। मफ़ामती यादाश्तनामे मूजिब ईरान तां अमरीका हतमी मुआहिदे बाद समूरियूं पाबंदियूं हटाईंदो। तेहरान एटमी हथियार न ठाहींदो हतमी मुआहिदे ताईं। ईरान जो एटमी प्रोग्राम मंजमंद रहंदो। वतन में अमरीका पारां ईरान जा मंजमंद कयल आशा सां बहाल करण वारो उहिद बि शामिल। मुआहिदे जी निगरानी लाइ मैकेनिज़म जुड़ण ऐं सलामती काउंसिल जी मंज़ूरी वारा नुक़्ता बि शामिल। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल दुनियन खे मुआहिदे ताईं पहुचाइण में अहम किरदार अदा कयो। सदर आसिफ ज़रदारी अमरीका ऐं ईरान में शुरूआती मुआहिदो थियण जी आजियां कंदे चयो त फेबरवरी में शुरू थियल तकरार खिते समेत समूरी दुनिया खे मुतासिर कयो। उमीद आहे त ॿीहर अहिड़ी सूरतहाल पैदा न थींदी। मुल्क हाणे अवामी मसइलनि जे हल ते ध्यानु ॾींदा।

सदाईं बजट में आवाम के रिलीफ ॾियण जी कोशिश कई आहे। मुल्की दिफ़ा ऐं एके ख़ातिर सूबन वफ़ाक़ खे पैसा ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। हदफ़ हासिल एस आर बी जी सूरतयाल बहितर आहे। लॻे थो हलंदड़ साल एफ बी आर हदफ़ हासिल करे वेंदो। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त बजट में 300 अरब रूपियनि जी लॻभॻि खसारो आहे। सिंध खे वफ़ाक़ खां 2230 अरब मिलंदा। सूबाई हदफ़ 456 अरब रखियो आहे। वफ़ाक़ ऐं सूबनि तय कयो आहे त हर कम आइन मुताबिक़ कंदासीं। मुश्किल वक़्त में सूबनि मुल्क जी ख़ातिर वफ़ाक़ खे सपोर्ट कयो। वफ़ाक़ खे ग्रांट पैसा पूरा मिलण ते ई ॾींदासीं।

सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री बल्दिया सानी केस जो लिखित में फैसलो जारी कर छो दहशतगर्द अदालत सिंध हाई कोर्ट जो फैसलो कालदन करार फैसले मूजिब जवाबदार जुबेर चरिया ए रहमान भोला के शक जो फायदो डींदे बरी कया वे तो जवाबदार बेन केसन में घुर्बल नायन तखेन आजाद कया वे।

0: वकील तौर पेश थियण ते कस्टम जे वकील मेयर मुर्तज़ा वाब ते एतराज़ वारे केस जी ॿुधणी दौरान कस्टम जे वकील चयो त कानून मूजिब मेयर वकील जी हैसियत में केस ॾियण लाइ पेश नथो थी सघे। जस्टिस निसार बमरू चयो त जंहिं कानून जो हवालो ॾिनो वञे थो उन कानून ते अमल कयूं हा त अधु वकील घर हलिया वेंदा। जस्टिस सलीम जैसर रिमार्क ॾिना त केतिरा ई वकील सरकारी नौकरियुनि ज़ाती कारोबार ॿिनि उहिदनि ते मौजूद आहिनि। मुर्तज़ा वाब दलील ॾींदे चयो त हू मेयर तौर सिंध हुकूमत खां पघार न वठंदो आहे। सुप्रीम कोर्ट जे ऑब्जर्वेशन मूजिब चूंडियल नुमाइंदो वकील जी हैसियत सां निजी प्रैक्टिस करे सघे थो। सिंध में पाणी जो बहरान बरकरार, पोखियल फसल सड़ण लगा, मुख़्तलिफ़ शहरनि में आबाद करण जा मुज़ाहिरा ऐं धरणा। वाहरा तालुके में ज़री पाणी जी खोट ऐं बदमी ख़िलाफ़ सवे माण्हुनि जी रैली। निटण उस में धरणो, पाणी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। मीरपुर भटोरू में आबाद करण ऐं हारुनि जो गंजबर कैनाल समेत मुख़्तलिफ़ शाखनि ऐं वाहन में पाणी खोट ख़िलाफ़ एजाज़ कयो। जरवार ऐं बरपासे में पाणी खोट ख़िलाफ़ जसकम जो प्यादल मार्च इलाइक़े में पाणी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। सन में माजन तालुके में पाणी खोट ख़िलाफ़ हारनि एजाज़ कयो। मीरापुर में मुबैना तौर ते ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि हिक ई घर जा टे भाती फोत, पंज ॼणनि जी हालत गणती जोगी। ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि ॿिनि वरियुनि जी नेहा मलिक, नौजवान इरशाद ऐं एहतशाम फोत थिया। इरफान मलिक, हनान साइमा, उस्मान समेत ॿिया गणती जोगी हालत में अस्पताल दाख़िल। पुलिस चयो आहे शुरूआती जांच मूजिबि नाश्ते में का ज़हरीली शइ खाइण सबबि घर जा भाती फोत ऐं बेहोश थिया आहिनि।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: छा मां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

को उठना पड़ेगा। दूसरा, एहतजाज करने वालों को, सियासी जमातों को और सबको मिल बैठ के तमाम मसाइल का हल निकालना चाहिए। हमें शॉर्ट टर्म नहीं, एक ऐसा ट्रूथ एंड रेकंसिलिएशन एस्टैब्लिश करना चाहिए जहां ये तमाम इश्यूज का हम एक दफा एक वक्त में खत्म करें, एड्रेस करें, ताकि बार बार हर दूसरा हफ्ता बाद पूरा आजाद कश्मीर के अवाम को इस तरीके से यरगमाल नहीं बनाया जाए। और जनाब स्पीकर, एक बार फिर दिस चैलेंज रिक्वायर्स अस टू ब्रेक फ्रॉम द मोड, टू ब्रेक फ्रॉम द स्टेटस को। हम वही सियासत 1947 से लेकर 2027 तक नहीं चला सकेंगे आजाद कश्मीर के वो। उन उधर इलेक्शंस होने वाले हैं और अब जो उस इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं उनको ये फैसला करना पड़ेगा, क्या हम रिवायती सियासत करेंगे, क्या हम वहां जाके यही वादा करेंगे कि आपको राय शुमारी तक, आजादी तक, प्लेबिसाइट तक ऐसे ही चलाएंगे। नहीं जनाब स्पीकर, एक नया नस्ल पैदा हो रहा है आजाद कश्मीर में, उस नया नस्ल ने अपने हकूक का जद्दोजहद लड़ना है। हमने ये तरबियत दिया है, नस्ल दर नस्ल तरबियत दिया है इनको कि अपने हकूक के तहफ्फुज करें, अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करें। अभी आप इसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं, आजाद कश्मीर के अवाम अपने हकूक का जद्दोजहद करना जानते हैं। हम चाहते हैं कि हम एज ए मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो दैट अंडरस्टैंड्स दैट मोदी वांट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, कि हम आजाद कश्मीर को एक नया मंशूर दें, आजाद कश्मीर को एक नया प्रोग्राम दें। हम सिर्फ ये एहतजाज करने वालों के बजाय नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन में हिस्सा लेगा। जैसे मैंने गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से वादा किया कि मैं उनको हक हाकमियत दिलवाऊंगा, हक मलकियत दिलवाऊंगा, हक रोजगार दिलवाऊंगा, इंशाल्लाह ताला मेरा वादा आजाद कश्मीर के अवाम के लिए वही होगा। हां, वी हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। हमने

0: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम

इग्लो हर दिन का शो। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: pressed into a safe theater.
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

very tough to reveal. But as curiosity

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सरदारी जीबी के कौमी असेंबली ऐं सेनेट में नुमाइंदगी ॾियण जो मुतालबो करे छॾियो। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज ते वेठलनि खे एहतजाज ख़तम करण ऐं वापसि ॻाल्हियूं करण जो मशवरो। आज़ाद कश्मीर में थींदड़ चूंडनि में हिसो वठण जो बि ऐलान। कौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी चयो त आज़ाद कश्मीर खे बि नओ मंशूर ऐं पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ॾियणी पवंदी। आज़ाद कश्मीर जो मसइलो धरणे सां न पर कानून साज़ी सां हल थींदो। आज़ाद कश्मीर में कानून हथ में खणंदड़नि ख़िलाफ़ एक्शन करणो पवंदो। असां आज़ाद कश्मीर खे वधीक नुक़सान थियण न ॾींदासीं। माजरनि जूं सीटूं बंदूक जे ज़ोर ते ख़तम न थियूं करे सघजनि। घणो थियो, हाणे एहतजाज ख़तम कयो। एक्शन कमेटी पहिरें मुआदे ते अमल करे ऐं चूंडनि तरफ़ अचे। आज़ाद कश्मीर में जेको कुझु थी रहियो आहे उन सां कश्मीर काज खे नुक़सान थी रहियो आहे। अमरीकी ऐं ईरानी सदर जे सहीन बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ अमरीका ईरान में ते मुफ़ाहमती यादाश्त नामे ते सही करे छॾी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त आला सतह ते मुआदे ते सहियूं थियण मां साबित आहे त धुरियूं तकरार जी सिफ़ारती हल लाइ पुरज़म आहिनि। मुफ़ाहमती यादाश्त फौरी तौर लागू हूंदी। ईरान अबन हरमुस खे खोलींदो ऐं अमरीका तेहरान जे बहिरे नाकाबंदी ख़तम कंदो। पाकिस्तान शरीक सालिस कतर जी हिमायत सां सुभाणे ते थियल तकरीब जी मेज़बानी कंदो। सदर ट्रम्प खे तकरार जो पुरमन हल करण ते मुबारक ॾियण सां गॾु भेटा पेश कयां थो। ईरानी क़यादत खे बि अमन लाइ क़दम खणण ते सदर जी निगाह सां ॾिसां थो। अमन अमल में कतर, सऊदी अरब, तुर्किया ऐं मिस्र जो किरदार बि सारा जोगो रहियो। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर जी महिनत ऐं किरदार सबब इलाइक़े में से काम आयो। खेस भेटा पेश कयां थो। पाकिस्तान जूं कोशिशूं कामयाब। अमरीका ऐं ईरान तय थियल मुफ़ामती यादाश्त नामे ते सहियूं करे छॾियूं। मुफ़ामती यादाश्त नामा हतमी सहियूं सुभाणे स्विट्ज़रलैंड में थींदियूं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं ॿिया सालिस मुल्क शरीक थींदा। अमरीकी सदर ट्रम्प ऐं ईरानी सदर मसूद पिस्टिकियान मुफ़ामती यादाश्त नामे ते सहियूं कयूं। सदर ट्रम्प चयो आहे त ईरान खे बैलिस्टिक मिसाइल सां महरूम रखणु मुनासिब नाहे। तेहरान जो रवैयो मुस्बत रहियो त ईरान खे 300 अरब डॉलर जी फंडिंग ताईं रसाई हासिल थी सघे थी। ईरान जा मुंजमद असासनि ताईं बि रसाई हासिल करे सघे थो। सिफारती अमल लाइ 60 ॾींहनि जी मुदत हतमी नाहे। असां गालियुनि में फ़ौजी कार्रवाई खां वधीक हासिल कयो आहे। हासिल कयल कामयाबी खे फ़ौजी कार्रवाई सां भेटे नथो सघजे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीपाफ चयो आहे त गालियुनि जो मक़सदु झुकण नाहे हूंदो। जेका गंड हथ सां खुली सघे थी उन खे डंदनि सां खोलण जी ज़रूरत नाहे हूंदी। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त लबनान में इसराइली फ़ौज जी मौजूदगी मुआदे जी भजकड़ी आहे। इसराइल लबनान ते कब्ज़ो जारी रखियो त ज़रूरी क़दम खया वेंदा। तेहरान जो एटमी प्रोग्राम पुरमन मक़सदनि लाइ आहे। ख़तम न थींदो, नई रचायल यूरेनियम कंहिं ॿिए मुल्क मुंतक़िल थींदो। लबनान समेत समूरनि माज़न ते जंग बंदी, हिक ॿिए जी ख़ुदमुख़्तियारी जो एतराम। अमरीकी पहिरीं नाकाबंदी जो ख़ात्मो, अबन हरमुस जे मुकमल तौर बहाली। ईरान ऐं अमरीका में तय थियल 14 नुक़्ता साम्हूं अची विया। ईरान जे नए सिर तामीर लाइ 300 अरब रूपियनि जो मनसूबो बि शामिल। मफ़ामती यादाश्त नामे मूजिबि ईरान तां अमरीका हतमी मुआदे बाद समूरी पाबंदियूं हटाईंदो। तेहरान एटमी हथियार न ठाहींदो। हतमी मुआदे ताईं ईरान जो एटमी प्रोग्राम मुंजमद रहंदो। मतन में अमरीका पारां ईरान जा मुंजमद कयल असासा बहाल करण वारो अहद बि शामिल। मुआदे जी निगरानी लाइ मेकेनिज़म जोड़ण ऐं सलामती काउंसिल जी मंज़ूरी वारा नुक़्ता बि शामिल। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल धुरियन खे मुआदे ताईं पहुचाइण में अहम किरदार अदा कयो। सदर आसिफ अली ज़रदारी अमरीका ऐं ईरान में शुरूआती मुआदो थियण जी आजिया कंदे चयो आहे त फेबरवरी में शुरू थियल तकरार ख़िते समेत समूरी दुनिया खे मुतासिर कयो। उमीद आहे ॿीहर अहिड़ी सूरतयाल पैदा न थींदी। मुल्क हाणे अवामी मसइलनि जे हल ते ध्यानु ॾींदा।

0: वफ़ाक़ियतन अलपैसा वतो न पर आइनी ज़िमेवारी आहे। वफ़ाक़ियतन सालनि ताईं फंड्स ॾींदासीं एन एफ सी जे फार्मूले में तब्दीली बि ग़ौर हेठि आहे, पर फ़ैसिलो इतफ़ाक़ी राय सां ई थी सघे थो। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वॾे वज़ीर मुआज़ अली शाह चयो आहे त मुश्किल वक़्त में सूबनि मुल्क ख़ातिर वफ़ाक़ खे सपोर्ट कयो। वफ़ाक़ खे मदद ॾियण लाइ सूबनि का न क़ीमत ज़रूर अदा कई आहे। सिंध हुकूमत आइनी हक़ इस्तेमाल कंदे मुल्की दिफ़ा लाइ पैसा ॾिना। बजट में 300 अरब रुपियनि जे लॻभॻि खसारो आहे। सिंध खे वफ़ाक़ खां 2263 अरब मिलंदा। सूबाई हदफ 456 अरब रखियो आहे। सरकारी नौकरियुनि ते माण्हुनि जो दारोमदार घटाइण चाहियूं था। निजी शोबे खे हथी ॾेई रहिया आहियूं। वॾे वज़ीर तब्दीली वारियुनि ख़बरुनि खे अफ़वाह करार ॾेई छॾियो। मुराद अली शाह चयो आहे त मुंहिंजी तब्दीली वारियूं ख़बरूं 10 सालनि खां हली रहियूं आहिनि। ख़बरूं केरु पखेड़े रहियो आहे ख़बर नाहे। साम्हूं ईंदड़ 4 नाला पीपल्स पार्टी जे जालनि जा आहिनि, चइनि मां मूंखे ख़तरो नाहे। करप्शन जो मसलो मौजूदु आहे, ख़बर पवण ते कार्रवाइयूं बि करे रहिया आहियूं। कुझु ख़राब माण्हुनि जे करे सॼो निज़ाम ख़राब थियण न ॾींदासीं। यूनिवर्सिटी रोड जी तामीर में देर असांजी बदकिस्मती ऐं ठेकेदार जी न हली आहे। सेनेट नए माली साल जी बजट बाबत 123 सिफारिशन जी मंजूरी ॾेई छॾी। वज़ीर आज़म जे स्पोर्ट्स एरिनास ऐं ट्रेनिंग सेंटर्स मनसूबे खे PSDP में शामिल न करण जी सिफ़ारिश। पाकिस्तान वापार आॾो कानून ढंढकूं ख़तम करण ऐं तफ़्तान बार्डर ते इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करण जी सिफ़ारिश। तरक़ियाती मनसूबनि, टैक्स सुधारनि, औरतनि जी फलाह ऐं माहौलियाती तहफ़ुज़ बाबति क़दम खणण ते ज़ोर भरियो। कासा 1000 ट्रांसमिशन लाइन खे बि महफ़ूज़ इलाइक़नि मां गुज़ारण जी सिफ़ारिश।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

सेनेट नए माली साल जी बजट बाबत 123 सिफारिशन जी मंजूरी ॾेई छॾी। वज़ीर आज़म जे स्पोर्ट एरिनाज ऐं टेनिक सेंटर्स मनसूबे खे PSDP में शामिल न करण जी सिफारिश। पाक ईरान वापार आॾो कानूनी रंडकूं ख़तम करण ऐं तफ़्तान बार्डर ते इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करण जी सिफारिश। तरक़ियाती मनसूबनि, टैक्स सुधारनि, औरतुनि जी फलाह ऐं माहौलियाती तहफ़ बाबति क़दम खणण ते ज़ोर भरियो। कासा 1000 ट्रांसमिशन लाइन खे बि महफ़ूज़ इलाइक़नि मां गुज़रण जी सिफारिश।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती जो असल रा स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

बजू किसी माठ लगी मेरे घर अखू यार अजी बजू किसी माठ लगी मेरे घर मुझे माना निशान मारो मुर्गी महबूबन माना निशान मारो मुर्गी माशू।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

ईरान अमरीका मफ़ावती याददाश्त नामे ते सही खां पोइ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान विच में पहिरियों भेरो राब्तो। वज़ीर-ए-आज़म मौसी पधराई मूजिबि ॿिन्ही अॻवाणनि विच में 30 मिंटनि ताईं ॻाल्हि ॿोल जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म अमन माहिदे ते ईरान जी सही करण वारे फ़ैसिले जी साराह कंदे चयो त ही तारीख़ी माहिदो ख़िते में अमन जे क़याम ऐं ईरानी क़ौम जी नई सिर जोड़जक में मददगार साबित थींदो। ईरानी सदर में किरदार अदा करण ते वज़ीर-ए-आज़म ऐं फील्ड मार्शल जा थोरा वञिया। अमरीका ईरान जे सदर खां पोइ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे ते सही करे छॾी। वज़ीर-ए-आज़म चयो आहे त आला सतह ते मुआहिदे ते सहियूं थियण पां साबित आहे त धुरियूं तकरार जी सिफारती हल लाइ पुरज़म आहिनि। मफ़ामती याददाश्त फौरी तौर लागू हूंदी। ईरान आबना हरमुस खे खोलींदो ऐं अमरीका पहिरीं नाकाबंदी ख़तम कंदो। तकरार जो पुरअमन हल कढण ते सदर ट्रम्प खे मुबारक ॾियण सां गॾु भेटा पेश कयां थो। ईरानी क़यादत खे बि अमन लाइ क़दम खणण ते सदर कदर जी निगाह सां ॾिसां थो। अमन अमल में कतर, सऊदी अरब, तुर्की ऐं मिस्र जो किरदार बि सारा जोगो रहियो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी महिनत ऐं किरदार सबब इलाइक़े में इस्तेहकाम आयो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी पी खे क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में नुमाइंदगी ॾियण जो मुतालबो करे छॾियो। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहिन खे एहतजाज ख़तम करण ऐं वापसि ॻाल्हियूं करण जो मशवरो। आज़ाद कश्मीर में थींदड़ चूंडनि में हिसो वठण जो बि ऐलान क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त आज़ाद कश्मीर खे बि नओ मंशूर ऐं पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ॾियणी पवंदी। आज़ाद कश्मीर जो मसइलो धरणे सां न पर कानून साज़ी सां हल थींदो। आज़ाद कश्मीर में कानून हथ में खणंदड़नि ख़िलाफ़ एक्शन करणो पवंदो। असांखे वधीक नुक़सान थियण न ॾेई सघजनि। घणो थियो हाणे कमेटी पहिरीं मुआदे ते चूंडनि तरफ़ वञे। आज़ाद कश्मीर में जेको कुझु थी रहियो आहे उन सां कश्मीर कास खे नुक़सान थिए पियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई।

0: एफ़ए मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576।
0: जी हां, 2315525786।
1: जी एफ़ एम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आज कश्मीर में थींदड़ चूंडन में हिस्सो वठण जो भी ऐलान। कौमी असेंबली में खिताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त आज़ाद कश्मीर के भी नओं मंशूर ऐं पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ॾियणी पवंदी। आज़ाद कश्मीर जो मसइलो धरणे सां न पर कानून साज़ी सां हल थींदो। आज़ाद कश्मीर में कानून हथ में खणंदड़नि ख़िलाफ़ एक्शन खणणो पवंदो। असां आज़ाद कश्मीर खे वधीक नुक़सान ॾियण न ॾींदासीं। माजरनि जूं सीटूं बंदूक जे ज़ोर ते ख़तम नथियूं करे सघजनि। घणो थियो, हाणे एहतजाज ख़तम कयो। एक्शन कमेटी पहिरें मुआदे ते अमल करे ऐं चूंडनि तरफ़ वञे। आज़ाद कश्मीर में जेको कुझु थी रहियो आहे उन सां कश्मीर कास खे नुक़सान थिए पियो। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साज़ी ते पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग में इतफ़ाक थी वियो। पीपल्स पार्टी अॻवान नवीद कमर चयो आहे त गिलगित जो वॾो वज़ीर ज़ियालो हूंदो, गवर्नर ऐं डिप्टी स्पीकर नून लीग जो हूंदो। हुकूमत साज़ी जे मामलनि ते नून लीग सां इतफ़ाक थी वियो आहे। ॿ ॾींहं अॻु नून लीग वफ़द बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां बि मुलाक़ात कई हुई।

0: को जरूरत पड़े और आप देखने की जरूरत सिर्फ उसकी नहीं है, उससे मैं भी अफेक्ट हो रहा हूँ, दिफा पे हर एक अफेक्ट हो रहा है ना, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे नहीं भाई मैं ये नहीं करूंगा, मैं चट्टी नहीं दू, चट्टी नहीं है, हमने आईन के मुताबिक दिया है। तो हर एक की अपनी अपनी सोच है, हमारी सोच सिर्फ इस हद तक है कि मुल्क की बेहतरी चाहिए, अपने आप को सेफगार्ड करना है, आईन के दायरे में रह के करना है।
1: वफाक के ॾिनल पैसा चट्टी न पर आईनी ज़िमेवारी आहे। वफाक खे 3 सालनि ताईं फंड्स ॾींदासीं। एनएफसी जे फार्मूले में तब्दीली बि हो रेठ आहे, पर फ़ैसिलो इतफ़ाक़ राय सां ई थी सघे थो। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वॾे वज़ीर मुआद अली शाह चयो आहे त मुश्किल वक़्त में सूबनि मुल्क ख़ातिर वफ़ाक खे सपोर्ट कयो। वफ़ाक खे मदद ॾियण लाइ सूबनि का न का क़ीमत ज़रूर अदा कई आहे। सिंध हुकूमत आईनी हक़ इस्तेमाल कंदे मुल्की दिफ़ा लाइ पैसा ॾिना। बजट में 300 अरब रूपियनि जे लॻभॻि खसारो आहे। सिंध खे वफ़ाक खां 2,263 अरब मिलंदा। सूबाई हदफ 456 अरब रखियो आहे। सरकारी नौकरियुनि ते माण्हुनि जो दारो मदार घटाइण चाहियूं था, निजी शोबे खे हथी ॾेई रहिया आहियूं।
0: मुझे तो पता नहीं है कि क्या क्यों ये बातें, मैंने ये कहा था नहीं, 10 साल से बातें हो रही हैं। जिस दिन मैंने वोट उठाया था जुलाई 2016 को, 30 जुलाई से ये बातें शुरू हो गई, 10 साल हो गए तकरीबन। और ये बातें जरूर आप लोग करेंगे ना यार, इसके बगैर है क्या जिंदगी में मजा? तो मुझे नहीं, हकीकतन नहीं पता। ठीक है, मुझे उस दिन कहा गया था कुछ नाम लिए गए, मैंने कहा यार ये तो आपने मुझे बिल्कुल ही टीज कर दिया, इसलिए कि जो 4 नाम उन्होंने लिए थे वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के ज्याले, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ज्याला अपनी लीडरशिप के, तो वो ऐसे ऐसी बात नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे का करते जिससे मुझे खतरा हो, मैं शायद करता इनसे कोई खतरा नहीं है।
1: वॾे वज़ीर तब्दीली वारियुनि ख़बरुनि खे अफ़वाह करार ॾेई छॾियो। मुराद अली शाह चयो आहे त मुंहिंजी तब्दीली वारियूं ख़बरूं 10 सालनि खां हली रहियूं आहिनि। ख़बरूं केरु पखेड़े रहियो आहे ख़बर नाहे। साम्हूं ईंदड़ 4 नाला पीपल्स पार्टी जे ज्यालनि जा आहिनि, चइनी मां मूंखे ख़तरो नाहे। करप्शन जो मसइलो मौजूदु आहे, ख़बर पवण ते कार्रवाइयूं बि करे रहिया आहियूं। कुझु ख़राब माण्हुनि जे करे सॼो निज़ाम ख़राब थियण न ॾींदासीं। यूनिवर्सिटी रोड जी तामीर में देर असांजी बदकिस्मती ऐं ठेकेदार जी नाअहली आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो स्विट्ज़रलैंड वारो दौरो मुलतवी। सफारती ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म खे स्विट्ज़रलैंड वञणो हो, पर हाणे इहो दौरो मुलतवी कयो वियो आहे। ईरान अमरीका मफ़ामती यादाशनामे ते सहीनि खां पोइ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान विच में पहिरियों भेरो राब्तो। वज़ीर आज़म हाउस जी पथराई मूजिबि ॿिन्ही अॻवाणनि विच में 30 मिंटनि ताईं ॻाल्हि ॿोल जारी रही। वज़ीर आज़म अमन मुआहिदे ते ईरान जे सही करण वारे फ़ैसिले जी साराह कंदे चयो त हीउ तारीख़ी मुआहिदो ख़िते में अमन जे क़याम ऐं ईरानी क़ौम जे नए सिर जोड़जक में मददगार साबित थींदो। ईरानी सदर अमन मुआहिदे में किरदार अदा करण ते वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जा थोरा मञिया। अमरीका ऐं ईरान जे सदर खां पोइ वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे ते सही करे छॾी। वज़ीर आज़म चयो आहे त आला सतह ते मुआहिदे ते सहियूं थियण मां साबित आहे त धुरियूं तकरार जे सिफारती हल लाइ पुरज़म आहिनि। मफ़ामती याददाश्त फौरी तौर लागू हूंदी। ईरान अपने हरबस खे खोलींदो ऐं अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़तम कंदो। तकरार जो पुरअमन हल कढण ते सदर ट्रम्प खे मुबारक ॾियण सां गॾु भेटा पेश कयां थो। ईरानी क़यादत खे बि अमन लाइ क़दम खणण ते कदर जी निगाह सां ॾिसां थो। अमन अमल में कतर, सऊदी अरब, तुर्की ऐं मिस्र जो किरदार बि सारा जोॻो रहियो। फील्ड मार्शल रज़ा समूनी जी महिनत ऐं किरदार सबबि इलाइक़े में इस्तक़ाम आयो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM
0: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वज़ीर आज़म चयो आहे त आला सतह ते माहिदे ते सहियूं थियण मां साबित आहे त धुरियूं तकरार जे सिफारती हल लाइ पुरज़म आहिनि। वफ़ामती यादाश्त फौरी तौर लागू हूंदी। ईरान अपना हर्मुज़ खे खोलींदो ऐं अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़तम कंदो। तकरार जो पुरमन हल कढण ते सदर ट्रम्प खे मुबारक ॾियण सां गॾु भेटा पेश कयां थो। ईरानी क़यादत खे बि अमन लाइ क़दम खणण ते कतर जी निगाह सां ॾिसां थो। अमन अमल में कतर, सऊदी अरब, तुर्किया ऐं मिस्र जो किरदार बि सारा जोगो रहियो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी मेहनत ऐं किरदार सबब इलाइक़े में इस्तेकाम आयो। ईरान अमरीका मफ़ामती यादाश्त नामे ते सहीअनि खां पोइ वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं ईरानी सदर मसूद पेशकियान विच में पहिरियों भेरो राब्तो। वज़ीर आज़म हाउस जी पधराई मूजिब ॿिन्ही अॻवाननि विच में 30 मिंटनि ताईं ॻाल्हि ॿोल जारी रही। वज़ीर आज़म अमन माहिदे ते ईरान जी सही करण वारे फ़ैसिले जी साराह कंदे चयो त ही तारीख़ी माहिदो ख़िते में अमन जे क़याम ऐं ईरानी क़ौम जे नए सिर जोड़ जक में मददगार साबित थींदो। ईरानी सदर अमन माहिदे में किरदार अदा करण ते वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जा थोरा मञिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो स्विट्ज़रलैंड वारो दौरो मुलतवी। सिफारती ज़रियनि मूजिब वज़ीर आज़म खे स्विट्ज़रलैंड वञणो हो, पर हाणे इहो दौरो मुलतवी कयो वियो आहे। असां ॻाल्हियुनि में फ़ौजी कार्रवाई खां वधीक हासिल कयो आहे। हासिल कयल कामयाबी खे फ़ौजी कार्रवाई सां भेटे नथो सघिजे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ़ चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मक़सदु झुकण नाहे हूंदो। जेका गंढ हथ सां खुली सघे थी, इन खे ॾंदनि सां खोलण जी ज़रूरत नाहे हूंदी। ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त लबनान में इसराइली फ़ौज जी मौजूदगी माहिदे जी बरेकरी आहे। इसराइल लबनान ते कब्ज़ो जारी रखियो त ज़रूरी क़दम खया वेंदा। तेहरान जो एटमी प्रोग्राम पुरमन मक़सदनि लाइ आहे, ख़तम न थींदो। नई रचायल यूरेनियम खे ॿिए मुल्क मुंतकिल थींदो। लबनान समेत समूरनि महाज़नि ते जंगबंदी। हिक ॿिए जी ख़ुदमुख़्तारी जो एतराम, अमरीकी बहरी नाकाबंदी जो ख़ात्मो, आबना हर्मुज़ जी मुकमल तौर बहाली। ईरान ऐं अमरीका में तय थियल 14 नुक़्ता साम्हूं अची विया। ईरान जे नए सिर तामीर लाइ 300 अरब रुपयनि जो मनसूबो बि शामिल। वफ़ामती यादाश्त नामे मूजिब ईरान तां अमरीका हतमी माहिदे बाद समूरियूं पाबंदियूं हटाईंदो। तेहरान एटमी हथियार न ठाहींदो। हतमी माहिदे ताईं ईरान जो एटमी प्रोग्राम मुंजमिद रहंदो। मतन में अमरीका पारां ईरान जा मुंजमिद कयल असासा बहाल करण वारो अहद बि शामिल। माहिदे जी निगरानी लाइ मैकेनिज़म जोड़ण ऐं सलामती काउंसिल जी मंजूरी वारा नुक़्ता बि शामिल।

वज़ीर-ए-आज़म आए फील्ड मार्शल धुरियन के माहदे तई अमेरिका ईरान में शुरुआती माहदो थे आजिया कदे है फेबरवरी में शुरू थियल तकरार खिते समेत समूरी दुनिया के मुतासर कर उम्मीद है बीहर अड़ी सूरत हाल पैदा नी मुल्क हाँ अवामी मसलन के हल से ध्यान दी।

0: बच्चे को जरूरत पड़े और आप देखने को जरूरत सिर्फ उसकी नहीं है, उससे मैं भी अफेक्ट हो रहा हूँ, दिफा पे हर एक अफेक्ट हो रहा है ना, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे नहीं भाई मैं ये नहीं करूंगा, मैं चट्टी नहीं दू, चट्टी नहीं है, हमने आईन के मुताबिक दिया है। तो मैं कहूँ हर एक की अपनी अपनी सोच है, हमारी सोच सिर्फ इस हद तक है कि मुल्क की बेहतरी चाहिए, अपने आप को सेफगार्ड करना है, आईन के दायरे में रह के करना है।
1: वफ़ाक़ जे पैसा चटी न पर आइनी ज़िम्मेवारी आहे। वफ़ाक़ जिन सालनि ताईं फंड्स ॾींदासीं एन एफ सी जे फार्मूला में तब्दीली बि ग़ौर हेठि आहे, पर फ़ैसिलो इतफ़ाक़ राय सां थी सघे थो। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वॾे वज़ीर वाद अली शाह चयो आहे त मुश्किल वक़्त में सूबनि मुल्क ख़ातिर वफ़ाक़ खे सपोर्ट कयो, वफ़ाक़ खे मदद ॾियण लाइ सूबनि का न का क़ीमत ज़रूर अदा कई आहे। सिंध हुकूमत आइनी हक़ इस्तेमाल कंदे मुल्की दिफ़ा लाइ पैसा ॾिना, बजट में 300 अरब रूपियनि जे लॻभॻि खसारो आहे। सिंध खे वफ़ाक़ खां 2263 अरब मिलंदा, सूबाई हदफ 456 अरब रखियो आहे। सरकारी नौकरियुनि ते माण्हुनि जो दारोमदार घटाइण चाहियूं था, निजी शोबे खे हथी ॾेई रहिया आहियूं।
0: मुझे तो पता नहीं है कि क्या क्यों ये बातें, मैंने ये कहा था नहीं 10 साल से बातें हो रही हैं। जिस दिन मैंने वोट उठाया था जुलाई 2016 में, 29 जुलाई 2016 को, 30 जुलाई से ये बातें शुरू हो गई, 10 साल हो गए तकरीबन। और ये बातें जरूर आप लोग करेंगे ना यार, इसके बगैर है क्या जिंदगी में मजा? तो मुझे नहीं, हकीकतन नहीं पता, ठीक है। मुझे उस दिन कहा गया था कुछ नाम लिए गए, मैंने कहा यार ये तो आपने मुझे बिल्कुल ही टीज कर दिया, इसलिए कि जो 4 नाम उन्होंने लिए थे वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के ज्याले, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ज्याला अपनी लीडरशिप के, तो वो ऐसे ऐसी बात नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे का करते जिससे मुझे खतरा हो, मैं शायद करता इनसे कोई खतरा नहीं है।
1: वॾे वज़ीर तब्दीली वारनि ख़बरुनि खे अफ़वाह करार ॾेई छॾियो। मुराद अली शाह चयो आहे त मुंहिंजी तब्दीली वारी ख़बरूं 10 सालनि खां हली रहियूं आहिनि, ख़बरूं केरु पकड़े रहियो आहे ख़बर नाहे। साम्हूं ईंदड़ 4 नाला पीपल्स पार्टी जे जालनि जा आहिनि, चवंदी मां मूंखे ख़तरो नाहे, करप्शन जो मसलो मौजूदु आहे, ख़बर पवण ते कार्रवाइयूं बि करे रहिया आहियूं। कुझु ख़राब पाणुनि जे करे सॼो निज़ाम ख़राब थियण न ॾींदासीं। यूनिवर्सिटी रोड जी तामीर में देर असांजी बदकिस्मती ऐं ठेकेदार जी नाअहली आहे।

0: सेनेट में नए माली साल जी बजट ते बहस मुकम्मल। ऐवान 123 सिफारिशन जी मंजूरी रही छी। वज़ीर आज़म के स्पोर्ट्स एरिनाज ए ट्रेनिंग सेंटर्स मनसूबे के PSDP में शामिल न करण की सिफारिश। पाक ईरान व्यापार आडो कानूनी रंडकू खत्म करण में ए तफ्तान बॉर्डर ते इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करण की सिफारिश भी कई वही। तरक्याती मनसूबन टैक्स सुधारन औरतन की फलाह ए माहौलियाती तहफ़ बाबत कदम करण ते जोर भरियो। कासा हजार ट्रांसमिशन लाइन के भी महफूज इलाकन मां गुजरण की सिफारिश।
1: बिल पेश थियो आ को भी बिल हों टेबल थींदो आ।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315 7786।

0: Do you buy
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज. मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
3: सुनते रहो GFM 90.4.

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।